91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह के 9 बज गए हैं और आपका इंतज़ार हुआ अब ख़त्म, क्योंकि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर मैं आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ श्रोताओं, आप सभी ठीक ठाक होंगे और रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़ चुके होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत जैसे कि हम करते हैं हमेशा ही एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ, तो श्रोताओं आज का विचार भी आप सुन लीजिए। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। बिल्कुल श्रोताओं, ये विचार हमें कहीं ना कहीं विचार करने के लिए मजबूर कर देते हैं और ऐसे विचार हम में आने चाहिए, हमें ऐसे विचारों को अपने जीवन में पालन करना भी चाहिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जो है वो अब आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का समय आपको एक बार फिर से बता दें, प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय रहता है इस कार्यक्रम का और रोज़ाना हम आपके साथ

करते हैं बातचीत और साथ ही जानकारियां भी आपको पहुंचाते हैं और आपका मनोरंजन करवाते हैं इन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत भी हम करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। चलिए लेते हैं इस प्यारे से गीत को कार्यक्रम में आप सभी के लिए। ये प्यारा सा गीत रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से।

श्रोताओं, आई हेट लव स्टोरी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और सोना महापाल की आवाज़ों में। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें 88.4 MHz पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। तो हमीरपुर के भी जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे श्रोताओं, और थोड़ा सा परेशान भी होंगे क्योंकि आजकल जो है वो गर्मी बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल श्रोताओं, और ये समय भी है आपको मौसम की जानकारी देने का। तो धर्मशाला की अगर हम बात करें तो इस समय बहुत तेज़ धूप जो है वो बाहर खिली हुई है और आज मौसम जो है वो गर्म रहने वाला है। आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस धर्मशाला का है और हवा में अगर नमी की बात करें तो 60% जो है वो नमी बनी हुई है हवा में। तो श्रोताओं, ऐसे में जब भी गर्मियाँ इतनी तेज़ आती हैं तो हम सभी ये सोचते हैं कि कहीं दूर निकल जाएँ इस गर्मी से बचने के लिए और कहीं पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा में बैठे रहें या फिर कहीं जल स्रोत में जाकर बैठें। और आजकल के बहुत सारे श्रोता यही कर रहे हैं, जैसे ही उन्हें थोड़ा सा समय मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रैक पर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पहाड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं और साथ ही ये जो हमारे झरने हैं, हमारी खड्डे हैं, नाले हैं, उनमें भी जा रहे हैं और ठंड से, गर्मी से बच रहे हैं। तो श्रोताओं, ऐसे में हम यही कहेंगे कि पानी और आग, ये दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं और गर्मी से कहीं ना कहीं हमें पानी बचाता तो है, मतलब ठंडक देता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाएं और हमें जानकारी ना हो कि किस तरह से हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो ये खतरे से खाली नहीं होता। तो बिल्कुल श्रोता, हम यही कहेंगे ख़ास करके अपने बच्चों से, युवाओं से, कि अगर आप सभी भी कहीं ना कहीं आजकल गर्मी से बचने के लिए निकल रहे हैं तो किसी बड़े को अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं और बड़ों का कहना ज़रूर माने और गर्मी से अपना बचाव रखें। आजकल बहुत सारे फल फ्रूट जो हैं मार्केट में मिल रहे हैं श्रोताओं, तो ज़रूर उनका सेवन करें और सलाद का सेवन भी आजकल आपको ज़्यादा करना चाहिए ताकि गर्मी से बचा जा सके। और हिमाचल की बात करें श्रोताओं, तो कुछ सालों से यहाँ पर भी बहुत गर्मी पड़ रही है और जहाँ बहुत सारे लोग मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर रुख करते थे गर्मियों से बचने के लिए, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा है कि यहाँ के खुद स्थानीय लोग जो हैं वो भी गर्मी से तंग आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, पेड़ों की कमी और जो ये हम लोग बोलते हैं ना आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस मौसम को बदलने में या ख़राब करने में सहायक है। तो श्रोताओं, पर्यावरण के बारे में रोज़ सोचिए, ये बात करने का विषय नहीं है, सोचने का विषय भी है। तो सोचिए पर्यावरण के बारे में और हम सोचते हैं आपके मनोरंजन के बारे में। तो चलते हैं कार्यक्रम में, लेते हैं अगला प्यारा सा गीत। सुनिए इस प्यारे से गीत को आप सभी अपने अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, करीब फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं संजीवनी और कुमार शानू की आवाज़ों में। और साथ ही श्रोताओं, कुछ ही पलों में अब समाचार का समय भी हो रहा है और हम सुनेंगे समाचार और बाकी की बातें करेंगे समाचारों के बाद।

0: ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। नीति आयोग की बैठक नई दिल्ली में आज। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल लेंगे भाग। प्रदेश सरकार ने 73 सरकारी स्कूलों को किया मर्ज। 20 किए बंद और 3 कॉलेजों के विलय का फैसला लिया वापस। कांगड़ा जिला के झगवार में एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का किया जा रहा निर्माण। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का विषय है

0: विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें आधारभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल मिले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से जुड़े चार प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व घाटा अनुदान राशि के बंद होने से राज्यों को हुए आर्थिक नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं की भरपाई और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग से जुड़े मुद्दे उठाने की है। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी हाईकमान से सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को करेंगे। 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 छात्रों वाले 73 स्कूल मर्ज एवं 0 नामांकन वाले 20 स्कूल और बंद कर दिए हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि स्कूलों के युक्तिकरण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। इस बीच सरकार ने 3 सरकारी कॉलेजों को विलय करने का आदेश वापस ले लिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें डिग्री कॉलेज कुकुमसेरी, डिग्री कॉलेज रोहनाट और डिग्री कॉलेज जयनगर के विलय के देश वापस लिए गए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की राशि से एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत डेयरी सेक्टर को नई मजबूती सहित हजारों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: कांगड़ा जिले के ढगवार में 225 करोड़ से अधिक की राशि से एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल डेयरी सेक्टर को नई मजबूती देगा बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद स्थानीय स्तर पर दूध की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे जहां किसानों और पशुपालकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं उन्हें बाजार तक पहुंच के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी को एक संगठित उद्योग का रूप मिलने से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह की आधुनिक परियोजनाएं किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने में मददगार साबित होंगी। ढगवार का यह मिल्क प्लांट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ग्रामीण समृद्धि की नई उम्मीद बनकर उभर रहा है, जो आने वाले समय में कांगड़ा की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में विधायकों के वोट डालने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश अतुल एस चांदुरकर के खंडपीठ के समक्ष मामला 15 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 जून को प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत स्थानीय विधायकों नगर निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में बराबर पार्षद होने पर वोट डालने का अधिकार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस संध्या में सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरनाम भुलर मुख्य कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचल के विभिन्न मशहूर कलाकार सांस्कृतिक संध्या का समा बांधेंगे। इसके अलावा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ लोगों और पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि सिरमौर जिला के नाहन में बारिश होने का समाचार है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 16 जून तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। विभाग ने आज 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, व्यावसायिक वाहनों का बढ़ेगा परमिट शुल्क, हर 2 साल में होगी 10% बढ़ोतरी। हिमाचल परिवहन विभाग ने मोटर वाहन नियम संशोधन का ड्राफ्ट किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, ई टैक्सी और ई रिक्शा के लिए मिलेंगे 50 करोड़, हिमाचल में अब 24 घंटे खुल सकेगी दुकानें। दैनिक जागरण का शीर्षक है, प्रमाण पत्र लाइसेंस सहित सभी सेवाएं करें ऑनलाइन। दैनिक भास्कर की खबर है, नीति आयोग की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे प्रदेश हित से जुड़े मुद्दे। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, प्रदेश में आज से बिगड़ेगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। नीति आयोग की बैठक नई दिल्ली में आज, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल लेंगे भाग। प्रदेश सरकार ने 73 सरकारी स्कूलों को किया मर्ज, 20 किए बंद और 3 कॉलेजों के विलय का फैसला लिया वापस। कांगड़ा जिला के धगवार में एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का किया जा रहा निर्माण। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: इक्यानवे 2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और समाचारों के बाद और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, अब बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है आपका मनोरंजन करवाए हुए, तो चलते हैं, पहले लेते हैं कार्यक्रम में एक प्यारा सा गीत और उसके बाद करेंगे हम आपके साथ बातचीत। ओम शांति ओम, इस फिल्म का गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। इस गीत को सुनकर मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर झूमे होंगे और गीत सुनते सुनते मैं तो स्टूडियो में बैठे बैठे ही झूम ली। और श्रोता, जब भी मन करे नाचने का, झूमने का, तो ज़रूर नाच लेना चाहिए, झूम लेना चाहिए और जो दिल करे वो करना भी चाहिए। कई बार हम अपने जो शौक़ होते हैं, अपनी जो इच्छा होती है, उसे मार देते हैं, लेकिन जहाँ जब दिल करे खुश होने का, नाचने का, गाने का, गा लेना चाहिए। और ये गीत था भी ऐसा कि इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं हम भी साथ में गुनगुना लिए और थोड़े से पैर भी थिरक पड़े। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में ऐसे ही गीत और भी आपके लिए लेकर आए हैं और ज़रूर आपको सुनवाएंगे, लेकिन कार्यक्रम में अब हम चलेंगे आज के दिन की ओर, यानी कि आज 11 जून का दिन है, बृहस्पतिवार है श्रोताओं। और आज का दिन इतिहास के पन्नों में कैसा रहा, ये जानने की इच्छा आप लोगों में भी होगी। तो चलते हैं, कुछ एक घटनाओं के बारे में जानते हैं, कुछ खास जिन घटनाओं ने इस दिन को खास बनाया। तो श्रोताओं, भारत और भारतीय इतिहास की ओर नज़र दौड़ाएं तो 1897 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर में महान क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। और साथ ही 1964 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा के अनुरूप उनकी अस्थियों की राख को पूरे देश में बिखेरा गया था। साथी श्रोताओं, 1999 की बात करें तो आज ही के दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत टाइगर हिल के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। श्रोताओं, ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं और हम उन घटनाओं को आपके समक्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से रखते हैं। और कार्यक्रम में बातें और भी हैं श्रोताओं, लेकिन फ़िलहाल के लिए फिर से हम रुकेंगे और आपका मनोरंजन करवाएंगे इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपसे करेंगे बातचीत। श्रोताओं आप लोगों ने बचपन में एक गीत सुना होगा या फिर आपने एक गेम खेली होगी और वो गेम आपको याद दिलवाऊंगी। हम भागते थे और बोलते थे कि दौड़ो दौड़ो बच्चों पहाड़ों पर आग लगी। और श्रोताओं आजकल पहाड़ों पर आग लग भी रही है और कुछ दिनों पहले की ही बात है हमारे धलूं गांव में इतनी प्रचंड आग लगी थी कि सच में मतलब डराने वाली थी और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो भी घबरा गए थे। श्रोताओं ये जो जंगल हैं इन्हें लगने में और इन्हें संवारने में कितने वर्ष लग जाते हैं लेकिन एक छोटी सी माचिस की तीली इतने बड़े जंगल को राख कर सकने की हिम्मत रखती है। लेकिन श्रोताओं कई बार हम कहते हैं कि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है उस गर्मी की वजह से आग लगी होगी लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इतनी तेज़ गर्मी भी नहीं है कि भाई आग ही लग जाए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी शरारती तत्व का हाथ ज़रूर रहता है। और कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहेंगे कि जो आग लगाता है वो खुद नहीं बताता कि मैंने आग लगाई है। चोरी करने के बाद चोर ये नहीं कहता कि चोरी मैंने की है लेकिन अगर उसकी अंतरात्मा जिंदा है तो उसे सोचना चाहिए इतना नुकसान होने के बाद लोगों पर तो क्या बीती लेकिन जिसने आग लगाई उसे क्या थोड़ी सी शर्म आई होगी थोड़ी सी दिमाग आया होगा कि उसने क्या किया। श्रोताओं ये जंगल हमें तो बहुत कुछ देते हैं लेकिन जो जंगली जीव जंतु हैं उनका तो ये घर है और बहुत सारे जीव जंतु इस जंगलों में रहते हैं और ऐसी प्रचंड आग जिसे कि संभालना मुश्किल हो जाए और ख़ास करके आजकल गर्मियों के दिनों में। तो श्रोताओं हम आपसे यही आग्रह करेंगे बार बार हम ये बात कहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से लेकिन बार बार कहने का फ़ायदा तभी है जब हम इन बातों को अमल में भी लाएं। ये जंगल हमारी बहुत कीमती धरोहर है इन्हें बनाने में वर्षों लगे हैं और इन्हें संभाल कर रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। अगर हम में से भी कोई करता है और ये कार्यक्रम सुन रहा है तो उनसे भी हम यही आग्रह करेंगे कि अपनी गलतियों से कुछ सीखिए कुछ समझिए। इंसान हैं हम लोग हम में विवेक है सोचने की शक्ति है दया भावना है और अगर हम दूसरों के प्रति सोचेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे बारे में सोचेगा। तो इन जंगलों को बचाइए ये आने वाले समय में हमारे लिए सहायक होंगे और अगर ये जंगल ना रहे तो फिर सोचिए कि जीवन का क्या होगा। तो श्रोताओं आप सभी से यही आग्रह है कि जो लोग ऐसा करते हैं और अगर आपकी नज़र में आ भी जाते हैं तो उनकी शिकायत आप ज़रूर कीजिए। और कहते हैं ना कि जीव जंतु जानवर उनका कोई भी नहीं होता वो अपने मुंह से अपनी कहानी अपना दर्द बयान नहीं कर सकते लेकिन हम लोग उनका सहारा बन सकते हैं। साथ ही श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे जिस दिन ये आग धलूं गांव में लगी थी उस गांव में एक जगराता भी था भंडारे का आयोजन किया गया था वहाँ पे भी सुनने में आया है कि बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो श्रोताओं हम तो अपने घरों में बहुत आराम से बैठे होते हैं लेकिन जिन पर बीतती है वही जानते हैं। तो हम फिर से एक बार आप सभी से यही आग्रह करेंगे कि जंगलों को बचाइए जंगलों को बढ़ाइए आग मत लगाइए। और कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और लेकर चलेंगे आप सभी को एक और प्यारे से गीत की ओर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला भी आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं। ये कार्यक्रम चलता है 11 बजे तक, तो ये कार्यक्रम आप सभी का अपना कार्यक्रम है श्रोताओं, और आप सभी इस कार्यक्रम साथ जुड़े हुए हैं ऐसा हमारा मानना है। श्रोताओं, जैसे ही सुबह होती है तो बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। दिन की जो प्लानिंग हमने पिछले दिन की होती है वो भी शुरू हो जाती है कि हम किस तरह से काम करेंगे और कैसे करेंगे। लेकिन कई बार सोने से पहले हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिन शुरू होने पर ही कहीं ना कहीं हमारी जो रणनीति जो हमने तैयार की होती है वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन श्रोताओं, खैर जो भी हो, लेकिन अपने काम को ज़रूर हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। देर सवेर ही सही, लेकिन वो ज़रूर कामयाब होता है। और देखिए, मेहनत करना तो हमारा काम है और फल देना ऊपर वाले का काम है, इसलिए अपनी मेहनत पर हमें विश्वास होना चाहिए। श्रोताओं, हम सभी जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। सुबह समय पर उठना, दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करना, बड़ों का सम्मान करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। और कहते हैं ना कि एक कहावत भी है, बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक इसी तरह हर दिन किया गया एक छोटा अच्छा काम हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाता है। यदि हम रोज़ केवल 15 मिनट पढ़ने की आदत डालें, थोड़ा व्यायाम करें और दूसरों की मदद करने का प्रयास करें, तो कुछ महीनों बाद हमें अपने अंदर बड़ा बदलाव दिखाई देगा। इसलिए याद रखिए, जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी विशेष दिन का इंतज़ार मत कीजिए। आज, अभी और इसी क्षण में शुरुआत कीजिए, क्योंकि कल की सफलता आज की आदतों पर निर्भर करती है। बिल्कुल श्रोताओं, और इन बातों के बाद अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जब वी मेट, इस फिल्म का ये गीत था और आप सभी ने इस गीत को ज़रूर इन्जॉय किया होगा। तो श्रोताओं, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम जुड़ेंगे कार्यक्रम में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में एक बार फिर से स्वागत है। जितने भी श्रोता कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आप सभी ने 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और सभी श्रोताओं को जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सबको भी, और साथ ही श्रोताओं आपको बता दें कि अब आप लोग हमें लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो श्रोताओं, जो भी श्रोता लाइव भी हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, उन सभी को एक बार फिर से सुषमा की दो हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम आगे बढ़ेंगे और अब चलेंगे जानकारियों की ओर, और एक बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो आप तक पहुँचाएँगे। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब कानूनी लड़ाई या परामर्श के लिए बड़े वकीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पैसा ज़्यादा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो श्रोताओं, उनके लिए अब लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से लोगों को बिल्कुल मुफ्त कानूनी सलाह देने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस जन कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। लोक मित्र केंद्र के जिला प्रबंधक विकास कुमार ने बताया कि समाज के हर वर्ग तक न्याय की पहुंच आसान बनाने के लिए लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से एक विशेष पहल की गई है। इसके तहत लोगों को सटीक कानूनी सलाह और परामर्श देने के लिए अनुभवी वकीलों का एक पैनल जो है वो तैयार किया गया है, जो कि सीधे आम जनता के साथ जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। ये जो सेवा है श्रोताओं, ये बिल्कुल निःशुल्क है और इसका लाभ कोई भी नागरिक उठा सकता है। तो ये थी जानकारी श्रोताओं, जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और आपका करवाएंगे मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, इस गीत के दौरान मेरी थोड़ी सी गपशप चली हुई थी शशि के साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और शशि के साथ मैं बात कर रही थी कि समय वही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव जो है अब के समय में आ गया है। हम बात कर रहे थे अपने बचपन की। जब हम बचपन में छोटे होते थे तो हमारे घर कच्चे होते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे, और हम लोग वहाँ चप्पल पहन के भी नहीं जाते थे। हमारे मदर फादर जो थे वो मना करते थे कि चप्पल को बाहर उतार के आओ। और मिट्टी के मकान हुआ करते थे, और प्यार भावना इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, और आए दिन कोई ना कोई मेहमान हमारे घर आता रहता था। और जब कोई रिश्तेदार आता था तो हम बच्चों की नज़र उनके हाथों में होती थी कि कौन सा फ्रूट या कौन सी मिठाई वो हमारे लिए लेकर आए हैं। लेकिन आजकल हमारे जो गेस्ट कह लीजिए या रिश्तेदार कह लीजिए, उनका आना जाना थोड़ा सा कम हो गया है। ये बात आप सभी ने भी नोट की होगी श्रोताओं, क्योंकि आजकल के समय में ना तो किसी के पास आने का वक्त है, ना ही किसी को बुलाने का वक्त रह गया है। आजकल अगर हमें कहीं जाना होता है किसी रिश्तेदार के पास, तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, नंबर डायल करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप सभी फ्री हैं, हम आना चाहते हैं, आ सकते हैं या नहीं। अगर आगे से कहा जाएगा कि आ जाइए तो हम चले जाएंगे, अगर ये कहा जाएगा कि नहीं अभी तो हम बिज़ी हैं, कहीं काम है, कहीं जाना है, तो हम जाने से रुक जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, वो भी एक समय था जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ बात करने का साधन नहीं हुआ करता था, फिर भी हम किसी के भी घर कभी भी पहुंच जाते थे, और घर में कोई ना कोई हमें ज़रूर मिल जाता था। और आओ भक्त की बात तो बहुत बड़ी बात थी श्रोताओं। उस समय कहते हैं कि बैठने के लिए सोफे नहीं हुआ करते थे, बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं हुआ करता था, लेकिन जितने संसाधन हुआ करते थे वो भी बहुत थे। कोई आ जाता था तो हमारे जो नाना नानी दादा दादी हुआ करते थे, तो वो हमारे यहाँ पर उन्हें कहते हैं बिन्ने, बैठने के लिए जिन्हें रखा जाता है, वो होते थे, और वो हम लोग किसी को आए गए लोगों को देते थे कि यहाँ बैठिए। तो ये एक सत्कार की बात हुआ करती थी, और हमें ऐसा लगता था कि ये भी बहुत बड़ी बात है। और श्रोताओं देखिए, पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो पुराने समय में हमारे पास संसाधन बहुत कम थे। फिर वही बात आ गई कि हम जंगलों के साथ जुड़े रहते थे। जंगल में जाकर हमारे बड़े बुज़ुर्ग खजूर, जिसे खजूरी कहते हैं, वो लेकर आते थे, उन्हें लाकर सुखाते थे, और किसी तरह से उसकी पंदे बनती थी जिनका इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाता था। तो बड़ा अच्छा लगता जब एक पंद तैयार हो जाती थी, तो अपनी मेहनत से वो तैयार की हुई पंद भी बहुत अच्छी लगती थी। तो श्रोताओं, आज वो समय है जब हमारे घर में सब कुछ है, हर एक चीज़ है, लेकिन समय ही नहीं है, ना आने का ना जाने का। कहीं ना कहीं प्यार और कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो खलती है हमारे अंदर। और आप में से बहुत सारे श्रोता हमारे ऐसे होंगे जो इस चीज़ को महसूस भी करते होंगे, सोचते भी होंगे, और ज़रूर अपने बच्चों के साथ साझा भी करते होंगे। तो श्रोताओं, वक्त कहीं भी निकल जाए, लेकिन अपने रिश्तों को संभालना बहुत ज़रूरी है। वो प्यार भाव, वो सत्कार आज भी हमें ज़िंदा रखना चाहिए। तो बातों बातों में आपके साथ हमने कर दी ये बातें, और अब बातों के बाद आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में गीत की और आपको सुनवाएंगे सिंदूर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। कहते हैं कि मौसम जो है वो चार ही होते हैं, लेकिन पांचवा मौसम प्यार का भी होता है, जो अब बहुत कम नज़र आता है। श्रोताओं, फिर से हम वही बात करेंगे कि भाई प्यार जो है वो एक दूसरे के साथ होना चाहिए। रिश्तों को अगर हमने संभाल कर रखना है, आगे चलाना है, तो इन रिश्तों में प्यार का जो गुड़ है, प्यार का जो मीठा है, वो डालना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम रिश्तों को निभाते ज़रूर हैं, लेकिन बस वही है कि निभाना है, ये रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा ही, लेकिन पड़ेगा ही वाली बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो भी रिश्ता है, हमारे साथ जुड़ा है, उसे आगे लेकर चलिए, बढ़िए। आए दिन श्रोताओं, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कहीं ना कहीं छोटे मोटे मनमुटाव या दूरियाँ बन जाती हैं, लेकिन अगर उन बातों को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो कभी भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, उन रिश्तों को अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। जो बात जहाँ होती है वहीं पर ख़त्म हो जाए तो हमें आगे बढ़ने में और अच्छा लगता है, और रिश्तों में कोई भी ऐसी बात नहीं होती। और कहा भी जाता है कि जहाँ चार लोग रहते हैं वहाँ 19-20 बात हो जाती है। कभी हमने किसी को बोल दिया, कभी किसी ने हमें बोल दिया, लेकिन एक कान से सुनकर अगर दूसरे कान से हम उसे निकाल दें और अपने मन में, अपने दिल में उस बात को ना लेकर जाने दें, तो रिश्ते बड़े ही अच्छे से निभ सकते हैं और निभाने भी चाहिए। श्रोताओं, प्यार ही है जो हमें जोड़ कर रखता है, और श्रोताओं, आपका और हमारा प्यार भी ऐसा ही है जो हमें जोड़े हुए रखता है। रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से आप श्रोता भी हमारे अपने सदस्य हैं। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये प्यार यूं ही बना रहेगा, हम इस चीज़ की कामना करते हैं। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब फिर से समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से श्रोताओं, हम वापस लौटेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। तो आप सब भी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस अंतराल के बाद। और कार्यक्रम में अब हम फिर से चलेंगे मनोरंजन की ओर और आपको सुनवाएंगे एक प्यारा सा गीत सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद आगे हम बढ़ेंगे। श्रोताओं, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा या हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, और किसी भी काम को करते समय जब हमारे दिमाग में ये विचार आता है तो हम कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे हटा लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन श्रोताओं, देखिए, अगर सोच हमारी बड़ी हो और कुछ करने कर गुजरने की एक हमारे अंदर उम्मीद हो तो हम कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं। और कई बार हम अपनी किस्मत को कोसते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी है, हमारी किस्मत में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है, हमारी किस्मत तो बहुत बुरी है। तो किस्मत बनाने से बनती है श्रोताओं, और अगर हम किस्मत को कोसते रहेंगे तो हम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी एक कहानी श्रोताओं जो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में थी, जो आपके साथ साझा करनी थी, आज ज़रूर उसे मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक आदमी ने अपने जीवन के 72 वर्ष एक सिलेंडर में बिता दिए श्रोताओं। सिलेंडर वो नहीं जो हम घर पर लगाते हैं श्रोताओं। और वो आदमी कौन था? वो थे पॉल अलेक्जेंडर। 1952 में अमेरिका में पोलियो फैला हुआ था। उस दौरान पॉल 6 वर्ष के थे और घर के बाहर खेल रहे थे। अचानक उन्हें बुखार जैसा फील हुआ और देखते ही देखते 6 दिनों के अंदर उनका पूरा शरीर, यानी कि सर से लेकर पैरों तक शरीर पैरालाइज हो गया और उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए उन्हें इस आयरन लंग मशीन में डाल दिया गया, जिसकी शेप जो है वो सिलेंडर के आकार में होती है, ताकि वो सांस ले पाएँ। ये एक नेगेटिव प्रेशर मशीन होती थी। ये हवा को बाहर धकेलती थी, जिससे पॉल के फेफड़े फूल जाते थे और वो सांस ले पाते थे। तो इस आदमी को देखकर हर कोई यही सोचता होगा कि इससे अपना जीवन ऐसे ही बिताया होगा, कुछ बड़ा तो किया नहीं होगा, क्योंकि एक सिलेंडर में पड़े रहने वाला इंसान क्या ही अचीव कर सकता है। पर श्रोताओं, पॉल ने कुछ ऐसा अचीव किया जो नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता। इस आदमी ने कॉलेज से डिग्री ली, विदेशों में घूमने गए, वकील बने और एक बुक भी लिखी। तो श्रोताओं, आप सभी सोच रहे होंगे कि उन्होंने वो बुक लिखी कैसे होगी, आपको इसके बारे में भी बताएंगे। आगे इस कहानी को सुनना ना भूलें। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद आपको ज़रूर पॉल की कहानी पूरी सुनाई जाएगी। तो श्रोताओं, क्रिमिनल फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना गीत, और श्रोताओं इस गीत से पहले आपको एलेक्जेंडर की कहानी जो है मैं सुना रही थी कि वो किस तरह से उन्होंने किताब लिखी। और आप सभी सोच रहे होंगे कि एक इंसान जिसका पूरा शरीर जो है वो काम नहीं करता और एक सिलेंडर में रहकर वो सांस लेता है, वो बुक कैसे लिख सकता होगा। तो श्रोताओं, उन्होंने अपने मुंह में एक स्टिक फंसाकर 5 से 8 सालों में एक एक वर्ड टाइप करके अपनी बायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था 3 मिनट्स फॉर अ डॉग। और ये हुआ कैसे? ये हुआ फ्रॉग ब्रीथिंग से, जिसमें हवा को पानी की तरह गटका जाता है। अपने अंदर सांस लेने की प्रैक्टिस सीखी उन्होंने, पहले 3 मिनट तक सांस लेने की प्रैक्टिस की और बाद में ये बढ़ते बढ़ते 4 से 5 घंटे हो गया। तब वो बाहर, घर के बाहर जाने लगे, फिर वो जाकर अपना काम करके फिर से वापस मशीन में आ जाते थे। श्रोताओं, सोचना चाहिए कि जहाँ हम छोटी छोटी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं, हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में 73 साल इस मशीन में बिताए। फाइनली 2024 में इनकी डेथ हो गई। तो पॉल की लाइफ देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका शरीर पिंजरे में हो सकता है, पर आपकी जो सोच है, आपकी जो थॉट्स हैं और आपकी जो ड्रीम्स हैं, वो तो आज़ाद ही होते हैं श्रोताओं। अगर पॉल जैसा आदमी मशीन में रहकर किताब लिख सकता है, डिग्री ले सकता है, वकील बन सकता है, और आपके पास तो सब कुछ है, तो इस हिसाब से श्रोताओं हमें अपनी सोच जो है वो बड़ी रखनी चाहिए। और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फेलियर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, बस एक हिम्मत की ज़रूरत होनी चाहिए। तो श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉल की ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। आप कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, और सोतन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में आप तक पहुँचाएँगे आप सभी की रेडियो सेट पर।

शुभ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, जिंदगी प्यार का गीत है और हर किसी को इसे गाना पड़ेगा, इसलिए मुस्कुराकर खुश होकर इस गीत को हमें गुनगुनाना चाहिए। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का श्रोताओं समय रहता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का, और हमें अब घड़ी जो है वो अनुमति नहीं दे रही कि हम बातों को और बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम में आपसे अनुमति लेने का समय जो है वो अब आ गया है। चलते चलते श्रोताओं कार्यक्रम में आज का आखिरी गीत आपको सुनवा कर जाएंगे आशा भोसले की आवाज़ में, और प्यार हो गया फिल्म से। और इस गीत के साथ अपनी रेडियो सुषमा को आज के लिए दीजिए अनुमति। अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। नमस्कार।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
6: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
7: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
8: Oh no!
6: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
7: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
7: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
9: Oh no!
7: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
8: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ आप सभी के साथ कुछ समय के बाद जो है वो मुलाकात होती रहती है। तो बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने आप को सतर्कता और जागरूकता की ओर लेकर जाते हैं, अपने आसपास के लोगों तक हर बात पहुंचाते हैं, हर जानकारी पहुंचाते हैं। तो उसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ी हूं दोस्तों। और आप सभी को याद होगा कि धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू टीम के साथ हम अक्सर बातचीत करते हैं, और जब भी उन्हें लगता है कि कुछ खास जानकारी आप सभी तक पहुंचानी है तो वो हमारे पास आते हैं और आप सभी के साथ जुड़ते हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो सबसे पहले तो उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि वो इतना कीमती समय निकाल कर जो है वो स्टूडियो में आते हैं और आप सभी तक जानकारियां पहुंचाते हैं। तो आज की ये खास बातचीत आप सभी सुनने वाले हैं हमारे खास मेहमानों के साथ, धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू टीम के साथ। तो आइए दोस्तों, क्या बातचीत रहने वाली है और क्या जानकारी आप सभी तक पहुंचने वाली है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए और शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस खास बातचीत का। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ हमारी इस खास बातचीत में रेडियो गुंजन धर्मशाला में।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, हिमानी मैम और प्रतिभा मैम जो है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े हैं। तो आज का जो विषय है बहुत ही खास है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मैम, जैसे आप एनिमल रेस्क्यू टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी डेली रूटीन की लाइफ पे थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। तो कैसा लगता है आपको, जैसे दिन की सुबह की शुरुआत करते हैं तो क्या रूटीन रहती है, क्या ख्याल सबसे पहले आपके मन में आता है?
1: देखिए, अगर डेली रूटीन की बात करें तो वैसे तो हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो 9 बजे के बाद ऑन होते हैं, पर हमारी डेली रूटीन में कभी भी विदाउट ब्रेक ही हम लोग काम कर रहे हैं
0: जी।
1: क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब इतने साल से जब आप काम करते हैं इस फील्ड में हैं, तो आपका पर्सनल नंबर भी है हर लोगों के पास, तो लोग छोटी चीज के लिए, बड़ी चीज के लिए कई बार ऐसे कॉल्स कर देते हैं जो ऑफ टाइमिंग होता है। तो हमारी रूटीन वैसा है कि आप अगर

0: सोचें कि वो हम घर पे भी हैं तब भी हम बिजी ही काउंट होंगे, क्योंकि
1: जी.
0: हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कोई कॉल ना लें या मदद करने की कोशिश ना करें.
1: जी
0: तो हमारा
1: बिल्कुल.
0: रूटीन वैसे ही शुरू होता है कॉल्स के साथ ही, और कॉल्स के साथ ही खत्म हो जाता है.
1: जी हिमानी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: हाँ मैम ने एकदम सही कहा कि काफी सारा, क्योंकि हम लोग शेल्टर वर्क में, मैं मोस्टली हमारा ऑफिस का रूटीन बता सकती हूँ, तो क्योंकि मैम ने सम अप ऐसे कर ही दिया है कि काफी सारे रेस्क्यूज में हम लोग बिजी रहते हैं. तो सबसे पहला काम जो हमारा ऑफिस आके होता है वो ये होता है कि हम सारे जो हमारे शेल्टर डॉग्स हैं उनसे मिले, क्योंकि वो पूरी रात भर अकेले होते हैं, वो हमारा इंतजार करते हैं कि जैसे वो हमें देखे, और वो काफी सब दौड़ दौड़ कर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम बेस्ट वर्क प्लेस में आ गए हैं, क्योंकि इससे अच्छा हो ही नहीं सकता. लोग आजकल अपने ऑफिस में एक एक डॉग्स रखते हैं ताकि वो ऐसे काम फील कर सके, और वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पास इतने सारे डॉग्स हैं, हम उनसे रहने का मौका मिलता है. फिर वही डेली मीटिंग्स, और फिर सब अपने अपने काम की तरफ बढ़ जाते हैं.
1: जी, तो बहुत ही प्यारा सा अनुभव, बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस है. और सचमुच जब हम किसी भी, चाहे इंसानों की बात करें, चाहे हम जानवरों की बात करें, पशुओं की बात करें, तो जब हम लॉन्ग टाइम के लिए जब उनके साथ जुड़ते हैं तो एक फैमिली मेंबर की तरह जो है हमें लगते हैं. और सुबह शाम जब घर पे मन भी नहीं लगता है कई बार, तो ऐसा लगता है कि यहीं रुक जाए. तो बिल्कुल दोस्तों, यही अपनापन और लगाव जो है, जब तक हमारे अंदर से नहीं आएगा तब तक हम अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आवारा कुत्ते हो या फिर किसी की भी हम बात कर रहे हैं ना. आजकल तो आपको सड़कों में देखने को मिलेगा आवारा कुत्ते या आवारा पशु जो है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्राइम्स जो है या एक्सीडेंट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जान को नुकसान पहुंचता है. तो आज का ये हमारा खास विषय दोस्तों, जैसे कि नसबंदी की हम बात करें तो क्यों करानी चाहिए, वैसे हमने आपसे पहले भी बात की, लेकिन एक बार कुछ उसमें चेंजेस हैं तो वो हम आप सभी तक पहुंचाना चाहेंगे एक अपडेट के साथ, नई जागरूकता के साथ. तो इस बातचीत पे जाने से पहले मुझे लगता है कि एक छोटा सा ब्रेक हो जाना चाहिए. तो आइए दोस्तों, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत, उसके बाद हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ.

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। तो प्रतिभा मैम, जैसे कि हम बात मैंने पहले ही कहा कि हम आज की इस खास बातचीत में नसबंदी की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दोस्तों को ये जानना, एक बार रिमाइंड कराना जरूरी है कि ये नसबंदी होती क्या है।
1: नसबंदी एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, जो नसबंदी करने के लिए ट्रेंड है, सर्जरीज करने के लिए ट्रेंड है, वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं ताकि वो फर्दर रिप्रोड्यूस ना कर सकें और बच्चे ना दे सकें और जो पॉपुलेशन है वो कहीं एक टाइम के बाद कंट्रोल में आ जाए। तो इस प्रोसीजर को सिर्फ नसबंदी कहते हैं। और नसबंदी जो हम करते हैं तो उसमें हम ARV जो कि एंटी रेबीज वैक्सीन है वो भी देते हैं ताकि उस डॉग को रेबीज से भी सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि उस डॉग ने अल्टीमेटली नसबंदी के बाद कम्युनिटी में वापस जाना है
0: जी।
1: और कान जो है उस पे एक वी मार्क बनाते हैं ताकि उस डॉग को दोबारा ना पकड़े और जो लोकल लोग हैं उनको भी इजीली आइडेंटिफाई हो सके कि इस डॉग की नसबंदी हो चुकी है, ये फर्दर और बच्चे नहीं दे पाएगा
0: जी। तो हिमानी मैम, आपको क्या लगता है कि जैसे जब आप फील्ड पे जाते हैं तो नसबंदी जरूरी क्यों है? अगर लोग इसके लिए अवेयर नहीं है तो उन्हें अपने आप को इस बात के लिए प्रेरित क्यों करना चाहिए कि आवारा कुत्तों की जो है नसबंदी, आवारा क्या पालतू कोई भी हो, उनकी नसबंदी कराना जरूरी है?
2: नसबंदी कराना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इकलौता ह्यूमेन तरीका है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का
0: जी।
2: हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं कि अब हमें बच्चे नहीं चाहिए या मुझे और बच्चे नहीं करने हैं, वो बेचारे बोल नहीं सकते, तो उनके बिहाफ में किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो फिर नसबंदी बहुत जरूरी है। और जो रोड के कुत्ते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता। अगर कोई माँ रोड में रहने वाली, अपने उसके चार बच्चे होते हैं, पांच बच्चे होते हैं, उसका भी खुद के खाने का ठिकाना नहीं है तो वो कहाँ से उनका करेगी। और ये लोग बहुत जल्दी हीट में आ जाते हैं, तो ये एक साल में 3 बार भी बच्चे दे सकते हैं
0: जी।
2: अगर वो हर बार 5-5 बच्चे दे रही है तो उसके एक साल में 15 बच्चे हो जाएंगे, और वो 15 बच्चों का कैसे उठाएगी सब कुछ, खाना पीना कैसे करना है, और उसकी खुद की भी हेल्थ खराब होती है। तो हम तो मेन ये सोचते हैं कि जितने कम बच्चे हो, जितनी वो अपनी लंबी लाइफ जी सके, जितनी हेल्दी लाइफ जी सके, वो बेस्ट है। तो बेस्ट है कि वो अकेली रहे हमेशा, और वो ताकि जो उसके फीडर्स भी उसका अच्छे से ध्यान रख पाए, क्योंकि वो खुद भी बाकी डॉग्स का खर्चा नहीं उठा सकते हैं
0: जी। बिल्कुल। तो अब हमने ये बात की कि नसबंदी होती क्या है और क्यों ये जरूरी है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम भारत के कानून की बात करें तो भारत के कानून पे नसबंदी का क्या एक नजरिया है, या किस तरह से ये प्रोसेस आपके सामने आता है?
1: देखिए, जो कानून है वो तो इसी तरीके से फ्रेम्ड है कि आप नसबंदी के लिए जो भी सेंटर्स हैं, जहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स हैं, सब फैसिलिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लोग नसबंदी कर सकते हैं
0: जी।
1: उनको AWBI सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और नसबंदी के बाद जहां से कुत्ता उठाया गया है वहीं पे वापस छोड़ा जाना चाहिए, उसको कहीं और रिलोकेशन नहीं की जा सकती है। लोगों में जो ये भ्रम होता है कि एक बार गाड़ी गई, उसने कुत्ते पकड़े, उनको लगता है कि अब ये कहीं वापस नहीं आएंगे, तो ये वाली जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है, लॉ के अगेंस्ट है। रिलोकेशन जो है वो क्रिमिनल इसमें आता है, आप कुछ भी डॉग को उठा के कहीं और रिलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस जानवर का जो जहां पैदा हुआ है उसका वहीं रहने का हक है, वो वहीं रहेगा। जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपके जो नियरेस्ट NGOs हैं, जो आपके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी मदद लीजिए, और जितना हो सके आपको लगता है कि आपके आसपास डॉग्स हैं जिनकी नसबंदी की जानी चाहिए, उनकी मदद लेके नसबंदी करवाइए। और पॉपुलेशन जो है वो हमारे में ये भी भ्रम होता है कि आज ले गए कुत्ते, अब ये स्टरलाइज हो गए, अब हमें कुत्ते नहीं दिखेंगे, पर जो ऑर्गेनाइजेशंस पकड़ भी रही हैं उनमें से भी अगर आप 90% भी करते हैं तो 10 कुत्ते वहां पे निकल आते हैं जो अनकैचेबल हैं। इसीलिए फीडर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फीडिंग कीजिए, डॉग्स को थोड़ा फ्रेंडली बनाइए, ताकि जो ये वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की ड्राइव्स हैं ये इजीली की जा सकें, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और लॉ में कहीं नहीं है कि रिलोकेशन होनी चाहिए या इनको मारा जा सकता है। लॉ स्ट्रिक्टली जो भी है ये बोलता है कि आप किसी को मार नहीं सकते, हार्म नहीं कर सकते, पॉइजनिंग जो है वो इलीगल है, पर लोगों को लगता है कि पॉपुलेशन घटाने का ये एक तरीका है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, एक तो ये इलीगल है, आपके अगेंस्ट पूरी प्रॉपर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी चीज कि जब आप ये काम करते हैं तो आप फ्रेंडली डॉग्स को वहां से एलिमिनेट कर रहे हो, जिनकी जगह कोई और कुत्ते ले ही लेंगे विद टाइम। तो ये वाला जो प्रोसीजर है जो लोगों को लगता है कि फॉलो कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। तो नसबंदी इकलौता इस चीज का उपाय है कि विद टाइम, समय के साथ साथ कुछ सालों में पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, और जहां नए बच्चे नहीं दिख रहे हैं उसका मतलब है कि वहां पे काम हो रहा है। पर ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है, तो लोगों को थोड़ी पेशेंस उस तरीके से रखनी पड़ेगी।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, अक्सर हम इस बात से परेशान तो हो ही जाते हैं, किसी की भी बात करें, चाहे आवारा कुत्ते घर के आसपास, हर किसी के घर के आसपास होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहां पर हमें देखने को मिलते हैं, हर कहीं होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो कि आजकल ब्रीड्स के होते हैं उन्हें ज्यादा लाड प्यार देते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, तो हम उन्हें मारते हैं पीटते हैं। जब हम कहते हैं ना कि जब बेवजह जब पूरा दिन चलते रहे आपके घर के आसपास तो आप परेशान हो जाते हैं, तब आप उन्हें मारना शुरू कर देते हैं या आप उन्हें कहीं और छोड़ आते हैं, तो वो एक तरह से गलत है। और क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो जी में आए हम वो करें। तो हम इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए जहां ये अलग अलग तरीके अपना रहे हैं वहां हम ये नसबंदी जो है वो करवा सकते हैं। उनके एक फैमिली मेंबर ही बन चुके होते हैं, वो काफी टाइम से वहां रह रहे होते हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस तो होते नहीं है मेरे आईडी से।
1: नहीं, हम जो भी कर रहे हैं वो हम चैरिटी हैं, मतलब ऐसे तो हम फंडिंग लोगों की, जो लोग डोनेशंस करते हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं
0: जी,
1: बट स्टिल हर कोई कैपेबल नहीं है। इसलिए हम जब नसबंदी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं उस चीज को कि अगर एक बार नसबंदी करके लोगों की ये सोच बदल जाए कि हाँ अब इसको खाना खिलाना मुझे सेफ लगता है, क्योंकि ये नसबंदी करवा के आया है, इसको हर साल वैक्सीनेशन मिल रही है। क्योंकि हम सिर्फ नसबंदी नहीं कर रहे हैं, हम हर साल ये भी इंश्योर करते हैं कि उसको जो रेबीज का टीका है वो भी लगे
0: जी।
1: तो जब फीडर्स इन्वॉल्व रहते हैं तो एक ये चीज होती है कि जब वो कुत्ता आपकी कम्युनिटी में घूम भी रहा है, एक तो उसकी नसबंदी हो गई, वो पॉपुलेशन बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रहा, दूसरी चीज उसको रेबीज का टीका लग रहा है, तो उससे वो खुद भी सेफ है
0: जी।
1: और कम्युनिटी में भी रेबीज जैसी बीमारी फैलाने के चांसेस जो है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं।
0: तो ये रेबीज की बीमारी जो है सिर्फ ये आवारा स्ट्रीट डॉग से ही फैलती है या फिर किसी के उससे भी फैल सकती है, मतलब जो हम घर पे रखते हैं?
1: बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं जो इस बीमारी को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, जैसे कि चमगादड़, और बंदर से भी कई बार रेबीज फैलता है। बट ऐसा नहीं है, जैसे डॉग्स हर कोई रेबिड नहीं होता है, वैसे ही इनमें चांसेस जरूर हैं कि ये फैला सकते हैं, बट ये नहीं है कि ये इकलौते ही कैरियर हैं और ये बस अब रेबीज ही फैलाएंगे। तो वो हमारी कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रे डॉग जो बाहर घूम रहा है गली में उसको रेबीज होगा और घर पे जो कुत्ता रखा है उसको नहीं होगा। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो स्ट्रे हो चाहे वो घर पे रहने वाला पेट डॉग हो
0: जी। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी ने जाना कि किस तरह से जो है हमें इनके लिए भी थोड़ा अपनी तरफ से योगदान देना जरूरी होता है। तो जैसे हम अपने घर पे रखते हैं डॉग्स को, उनका ध्यान रखते हैं, उसी तरह से जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका भी अगर हम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत अगर उनका ध्यान रखें तो उन्हें भी अपनापन मिलता है, और वो एक बहुत ही, और कहते हैं ना कि कुत्तों की हम बात करें तो बहुत ईमानदारी के साथ जो है वो अपना योगदान देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, और भी हम बात करेंगे।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज की ये खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए हैं हिमानी मैम और प्रतिभा मैम। तो आइए अपनी इस खास बातचीत को जो कि हम कर रहे हैं कि जो डॉग्स हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन क्यों जरूरी है और रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और कौन सी बातें ध्यान नहीं रखनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बात की कि जो ABC रूल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इसमें जो है इन्वॉल्व किया गया है, कौन कौन सी बातें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
1: सो ABC रूल जो है वो है ए एनिमल, बी बर्थ, सी कंट्रोल। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल अभी जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है तो उन्होंने कुछ चीजें ध्यान में रखने को बोली है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सबसे ऊपर आता है और उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने पहला ही स्टेटमेंट यही बोला है कि चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी अपार्टमेंट्स की सोसाइटी हो, कोई भी वेलफेयर सोसाइटी हो, या फिर कोई भी NGO ही भले क्यों ना हो, हम अपने हिसाब से ABC रूल को चेंज नहीं कर सकते। जो लिखा है हम सबको वही फॉलो करना है। उसके हिसाब से क्या होना है कि जितने भी डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स जिनको हम इंडीज बोलते हैं, उन सबकी स्टेरिलाइजेशन, नजबंदी बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण बहुत जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको जिस जगह से उठा रहे हैं हम उनको वहीं पे ड्रॉप करें। उनका रिलोकेशन अलाउड नहीं है। अगर कल के दिन कोई सोसाइटी ऐसा बोलती है कि ये डॉग्स को यहाँ से ले जाओ और कहीं और रख दो, तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। और रिलोकेशन के साथ साथ ये उन्होंने सारे स्टेट्स को ये चीजें करने के लिए बोली है कि सब हर जिले में अब एक ABC सेंटर होना चाहिए। तो इसमें हम अभी बहुत पीछे हैं, बट होपफुली सारे जिले इस बारे में काम करेंगे, सरकार, राज्य सरकार अगर काम करेंगी तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें सर्जरी करने के लिए ABC सेंटर चाहिए, हर जगह NGOs नहीं पहुंच सकती है। या तो आप NGOs को सपोर्ट करें, अगर नहीं कर सकते तो सरकारी तौर पर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हर एक जिले में ABC सेंटर हो, प्रॉपर वेट हो, क्योंकि हर कोई सर्जरी नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड वेट चाहिए उसके लिए, ट्रेन वेट चाहिए, पूरे सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारी दवाइयों की फैसिलिटीज, डॉग्स की फीडिंग का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनका पोस्ट ऑप केयर में आपको ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद उनको ठीक से सही सलामत उनकी जगह पे वापस छोड़ देना है। और कोई भी मना नहीं कर सकते कि अब इनको यहाँ मत रखो, ये डॉग्स का अधिकार है, जितनी हमारी ये दुनिया है उतनी ही दुनिया उनकी भी है।
0: जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा है दोस्तों। रूल्स तो हमारी जिंदगी में बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी रूल से भटक गए तो जिंदगी पूरी भटक जाती है। तो उसी तरह से डॉग्स के लिए भी है हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैम, जैसे कि हम नसबंदी की बात करें, तो इसके लिए जैसे अभी मैम ने कहा कि ये बातें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन कुछ इसमें नसबंदी से जो डॉग्स को क्या फायदा मिलता है, क्या उनको लाभ होता है, या क्या उनको लोगों को कई बार ऐसा लगता है ना कि इसके करके शायद हमारे डॉग्स को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए नसबंदी के बाद, या किस तरह से ये होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो उसके बारे में हमारे दोस्तों को बताए कि क्यों ये फायदेमंद है।
2: देखिए, नसबंदी आप चाहे मेल ले लो चाहे फीमेल ले लो, दोनों की ही फायदेमंद होती है
0: जी।
2: पर फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को लगता है कि मेरे पास तो मेल डॉग है, उसकी नसबंदी करा के क्या फायदा
0: जी।
2: ऐसा ये सिर्फ भ्रम होता है। एक बार नसबंदी कराएंगे तो एक तो जब मेटिंग सीजन आता है, तो अगर कोई फीमेल है जो आसपास आपके रह रही है, अभी तक स्टरलाइज नहीं है, जब वो हीट में आएगी तो आसपास के सब डॉग्स को वो फेरोमोन का अलार्म टाइप सिस्टम हो जाता है कि इनको पता लग जाता है कौन सी फीमेल हीट में, तो ये मेटिंग के लिए लड़ते हैं। तब चाहे वो घर का कुत्ता भी है उसमें भी थोड़ा एग्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो अंदर नहीं रहना चाह रहा है, वो भाग रहा है। ये सब चीजें जो है वो नसबंदी करवा के कम हो जाती हैं। सेम फीमेल्स के लिए है, वो मेट नहीं करेगी, बच्चे नहीं देगी, एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरी चीज होती है जो इनमें मेमोरी ट्यूमर आते हैं और सूडो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार, कि लोग ये शिकायत भी होती है लोगों को कि ये मेट तो नहीं हुई पर इसके मेमोरी ग्लैंड्स बढ़ रहे हैं या इनमें मिल्क प्रोडक्शन हो रही है। वो सब हार्मोनल होता है, वो मेट तो नहीं हुई पर उसकी बॉडी सूडो प्रेगनेंसी, मतलब उसकी बॉडी को लगा है वो प्रेग्नेंट है, तो सब सिम्टम्स वो ऐसे देगी, और इवेंचुअली ये सब करने से उनको और बीमारियों के खतरा होता है। तो उस सब का भी एक सोल्यूशन यही है कि आपने अगर टाइमली नसबंदी कराई है तो वो नहीं होगा। तीसरी चीज होती है एक, जब आप मेटिंग करा रहे हो डॉग की, आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, हो सकता है इनमें एक्टिविटी आता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। जब वो मेट हुए तो वो आपकी फीमेल को नहीं था या आपके मेल को नहीं था, पर दोनों में से किसी एक को होगा, तो वो ट्रांसमिट हो गया और उसका फिर इलाज होता है कीमोथेरेपी। तो वो सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सिर्फ स्टरलाइजेशन कराइए, पॉपुलेशन तो घटेगी ही, साथ में बीमारियों से नियंत्रण होता है और इनकी हेल्थ पे भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स दिखते हैं। जो भी डॉग्स आपने देखे होंगे जो रेगुलर स्टरलाइज नहीं है, रेगुलर मेटिंग करवा रहे हैं, वो बहुत ही कमजोर और उस तरीके के दिखते हैं, जबकि एक स्टरलाइज डॉग हमेशा हेल्दी दिखने वाला होता है। तो हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते हैं इसमें और जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स हैं वो तो पता ही लग जाते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे तो, क्योंकि अगर आपने घर पे भी फीमेल रखी है, उसने मेटिंग कर ली, प्रेग्नेंट हो गई, 6 बच्चे दे दिए, आप उन बच्चों का क्या करोगे? बहुत ही कम चांसेस में वो अडॉप्ट होते हैं, फीमेल डॉग्स अडॉप्ट नहीं होंगी, तो फिर वो गलत काम करने के लिए आप भी कहीं ना कहीं हो जाते हो कि आप कहीं छोड़ आओगे उनको, जो कि गलत है, या कहीं बाहर रख दोगे, वो भी गलत है, और उन बच्चों का फ्यूचर तो कुछ रहेगा ही नहीं, साथ में उस फीमेल की भी हेल्थ खराब हो रही है। तो स्टरलाइजेशन इसका एक लौता उपाय होता है जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये करा लेनी चाहिए। और कई लोगों में ये भ्रम होता है कि एक बार बच्चे तो होने ही चाहिए
0: जी।
2: जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली उसका कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। हमने अपने डॉग्स की स्टरलाइजेशन फर्स्ट हीट से पहले ही करा दी है शायद, पर वो इक्वली हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ भ्रम है। राइट एज होनी चाहिए, जो कि 8 महीने से ऊपर किसी की भी हो सकती है, और एक राइट वेट होना चाहिए कि वो बहुत कमजोर नहीं है, 8 किलो भार अगर उसका है और वो 6 महीने से ऊपर है, 8 महीने से ऊपर है, तो उसकी नसबंदी की जा सकती है।
0: जी, तो मैम अब हम बात करें जो ये ABC रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें डॉग्स के साथ नहीं करनी चाहिए, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग वो एक तरह से हम इलीगल कह सकते हैं, तो कम्युनिटी का क्या रोल रहेगा उसमें, एज अ मतलब कि सोसाइटी या एज अ किसी का भी हम रोल की बात करें, तो किस तरह से ये जो है रहने वाला है?
2: जी देखिए, जो एक रूल्स के अकॉर्डिंग भी है और एक मतलब प्रॉपर लॉ भी है इसके अगेंस्ट, पहली तो चीज होती है कि आप मारेंगे नहीं उसको।
0: जी,
2: कुत्तों को देख के डरना एक फोबिया के अंडर आता है कि ठीक है आपको कुत्ते से डर लगता है।
0: जी,
2: अपने डर को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आप छोटे से बिस्किट से शुरुआत कीजिए तो वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा, आपको नहीं काटेगा। पर अपने डर के मारे ये सोसाइटी में ये वाली भ्रांतियां फैलाना कि वो एग्रेसिव है, वो काटता है, वो काट रहा है, ऐसे कॉल्स आते हैं हमें, और उस कॉल्स के चलते क्या होता है कि आपने 10 लोगों को ये बात बोली, 10 में से 8 सेम थिंकिंग के हैं, वो डर गए, अब आप सबकी मेंटालिटी बन गई कि आप उसको हार्म करेंगे, आपको डंडा मारेंगे, या आपने कुछ प्लान कर लिया, वो सब जो है वो इलीगल है। और सोसाइटी में भी लोगों को चाहिए कि अगर कुछ ऐसा होता देखते हैं किसी जानवर के साथ कि कोई उबलता पानी फेंक रहा है या कुछ उसको उठाने के लिए डंडा पत्थर मार रहा है, उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी और प्रूफ इकट्ठा करके आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ता है, बट आपके पास प्रूफ होने चाहिए। एक तो ये बिल्कुल इलीगल चीज़ है, दूसरी चीज़ है रिलोकेशन, जो कि बहुत लोग कॉल करते हैं कि इनको उठा के यहाँ से वहाँ रखाते हैं, आप रख दीजिए, आप कर दीजिए, ये बिल्कुल इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट है। जो कुत्ता जहाँ पैदा हुआ वहीं रहेगा अपनी पूरी ज़िंदगी। अगर आपको लग रहा है कि वो एग्रेशन उसमें आ रहा है, तो वो एग्रेशन किस वजह से है उसका मेन रूट कॉज पता करने की कोशिश कीजिए। पर ये झूठ और ये सब फैलाना, इससे क्या होता है जानवर की भी जो जिंदगी है वो एक रिस्क पर डाल रहे हैं आप, और अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपके डर के कारण आप उसको मारेंगे, अपने बचाव के लिए वो आपको काट लेगा, फिर अगर आप दोबारा जाके एनिमल को ब्लेम करेंगे कि उसने मुझे काटा, तो उसकी शुरुआत तो आपने
0: खुद की
2: है। तो ये सब चीजें जैसे उसको मारना, पॉइजनिंग करना, रिलोकेशन, ये सब क्रिमिनल एक्ट के अंडर आता है, इनको आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। द ओनली वे जो आप फॉलो कर सकते हैं वो यही है कि नसबंदी कराइए, साल दर साल आप उसको रेबीज का टीकाकरण करवाइए, और जितने भी डॉग्स आप देखेंगे ना कि जिनके मल्टीपल फीडर्स हैं, और जो डॉग्स स्टरलाइज से एक टाइम पे अब और बच्चे नहीं देते हैं, वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, उनका मतलब सिर्फ खाने और सोने तक ही रह गया है। अब डॉग अगर लड़ता भी है तो हमें भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि अगर एक रिसोर्स के लिए 10 लोग लड़ेंगे तो वो तो हमारे जैसा सेम ही है ना। अगर कोई एक चीज है जब हमें पता है कि एक कोई मिलेगी और 10 लोग लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ झगड़ा होना तो जायज ही है। तो सेम डॉग्स में है, अगर एक रोटी के लिए कॉम्पिटिशन होगा तो लड़ाइयाँ होंगी ही
0: होंगी,
2: तो वो हमें न्यूसेंस लगेंगी। इसलिए बेटर है उसकी रोकथाम के लिए नसबंदी करवाइए ताकि ये सब सिचुएशंस पैदा ही ना हो।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों जब पहले से ही सावधानी बरती जाए तो प्रॉब्लम्स खड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बहुत ही ये खास जानकारी आप सभी जान रहे हैं और अपने आप को उम्मीद करते हैं कि जरूर अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे और सतर्कता की ओर लेकर जाएंगे। तो अपने आसपास के डॉग्स के लिए ये ध्यान रखना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा तो काम है आप सभी तक कुछ खास बातें पहुंचाना। और हम इसी उम्मीद से आप सभी के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, जिससे कि आप जो है छोटी छोटी सी बातों को ध्यान दें जो कि हमारी डेली रूटीन और जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो मिलते हैं आप सभी से एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि इन बातों में थोड़ा सा ब्रेक देना जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा गंभीरता जो है वो हो जाएगी। तो एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। मैम क्यों ना आपकी पसंद का कोई प्यारा सा गीत हो जाए, आप दोनों में से किसी एक की।
2: तुम ही हो सॉन्ग आशिकी टू का।
0: जी बिल्कुल। तो आइए दोस्तों मैम की फरमाइश में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर से मिलते हैं आप सभी के साथ।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। और जानकारियों का जो है ना, ये फ्लो इस तरह से बना होता है कि हमें तो मन करता है कि कुछ छूटे ना बस आप सभी तक पहुंचने के लिए। तो ये बहुत ही खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू टीम के साथ जुड़कर, और सबसे खास बात अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। और मैम, जैसे कि हम नसबंदी की बात कर रहे हैं आज की इस खास बातचीत पे, तो जो हम अभी रूल्स की बात कर रहे थे, तो अक्सर हम देखते हैं सोसाइटी में, जरूरी नहीं है कि डॉग्स की ही हम बात करें, जब भी हमारी सोसाइटी में कोई अननोन पर्सन आ जाते हैं या कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग ही आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन है, क्यों आए हैं, किस तरह से, पर अंदर से एक हिचकिचाहट होती है कि हम पूछेंगे तो कहीं बवाल ना हो जाए, कोई हमें टारगेट ना करे या कोई कुछ बोल ना दे, है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है, जो सोसाइटी के लोगों के क्या राइट्स रहते हैं अगर कोई जाने अनजाने में एकदम से हमारी सोसाइटी के अंडर आ गया और डॉग्स को उठा के लेकर जा रहा है या बिना किसी को बताए नसबंदी कर रहे हैं, तो उसके अंडर एक आम लोगों के क्या जो है राइट्स रहते हैं, क्या उनके लिए प्रोसेस रहता है?
1: सो अगर आप जागरूक जनता है और आप जानना चाहते हैं कि अगर कुत्ते उठाने वाले आए हैं और वो कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपका हक बनता है कि कुछ क्वेश्चंस आप उनसे जरूर पूछे। आप उनसे पूछे कि वो कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हैं, कौन सी फैसिलिटी में लेकर जा रहे हैं, क्या उनको ये करने की परमिशन है भी या नहीं भी है, वो कुत्ता कब लाएंगे, कब वहां छोड़ देंगे। और बिल्कुल आप उनसे पूछिए कि वो कहीं रिलोकेशन के लिए तो नहीं ले जा रहे हैं, कुछ ऐसा ना हो कि वो लोग नसबंदी के लिए आए ही ना हो, वो लोग रिलोकेशन के लिए आए हो। तो एज एन अवेयर जनता आप ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं और आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं इन सब चीजों का, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है। जैसे मैम ने ऑलरेडी बता दिया है कि आप फोटोज ले सकते हैं, आप वीडियोज ले सकते हैं, आप कोशिश करिए कि लोकेशन आप ट्रैक करें, ट्रैक इन द सेंस कि अगर इस लोकेशन से ले गए हैं तो आप नोट कर ले कि वो उन्होंने यहाँ से कुत्ता उठाया, क्योंकि लास्ट में एविडेंसेस बहुत जरूरी होते हैं। अगर वो केस आगे बढ़ रहा है, हम ले जा रहे हैं कोर्ट में, तो ये सारे प्रूफ जो है वहाँ बहुत हेल्प करेगा। तो हाँ, अगर आपको सच में कुत्ते पसंद है तो आपको थोड़ी सी एफर्ट्स और करनी पड़ेंगी कि उनकी नसबंदी ठीक से हो जाए और वो ठीक से वापस आ जाए।
0: जी, तो ये तो हमने जाना कि नसबंदी किस तरह से होती है, क्यों जरूरी होती है, और जो रूल्स अभी चेंज हुए हैं उसके अंडर हमारे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या राइट्स हैं। तो अब मैं ये बात करूं कि जैसे आप फील्ड में काम करते हैं, आप जो है अपने उधर डॉग्स को रखते हैं शेल्टर में, तो क्या आप जो है, आप पहले भी आपने कैंप के लिए जो है लोगों के साथ जुड़े थे, तो आपका जो ये कैंप रहता है नसबंदी का ही, या फिर आप नसबंदी के लिए जब फील्ड में जाते हैं, तो ये कब और किस तरह से रहता है?
1: हाँ, तो हम लोग साल में 3 कैंप करते हैं, जिसमें से 2 एबीसी के कैंप होते हैं, जिसमें हम 2 कैंप्स में नसबंदी करते हैं। पूरे दोनों कैंप्स एक एक महीने के चलते हैं, और जो तीसरा हमारा कैंप होता है वो है एआरवी, क्योंकि नसबंदी के साथ में वैक्सीन लगाना एंटी रेबीज की भी बहुत जरूरी है। तो एक हमारा ऑलरेडी हो चुका है अप्रैल में, अगला हमारा अब एआरवी का कैंप होगा जो हम सेप्टेम्बर में करने वाले हैं। उसके बाद हमारा नवम्बर के अराउंड हम लोग अपना एबीसी का कैंप करेंगे, सर्जरी का। हम इसमें कोशिश करते हैं कि धर्मशाला और आसपास के एरिया के जितने मैक्सिमम कुत्ते हो सके

0: हम उनकी नसबंदी कर लें, और इसमें फीडर्स की बहुत हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी टीम एक लिमिटेड अमाउंट के कुत्ते ही पकड़ पाती है, या वो हमारी गाड़ी को देखते ही भाग जाते हैं। तो अगर आप अच्छे फीडर्स हैं और कुत्ते आपके आसपास आपके पास आते हैं, तो हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप कुत्ते को बांध लीजिए, ताकि हमारी टीम आए और उनको इजीली ले जाए, और थोड़ा हमें भी आसानी हो, क्योंकि कुछ ना कुछ कुत्ते छूट जाते हैं, तो वो छूटे ना, तो अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो वो बहुत इजीली ये हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो हमें जानते हैं, लेकिन जब कोई बाहर से लोग आएंगे तो उन्हें देखकर वो या तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे, और उसी एग्रेसिव के चक्कर में हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं हमें काट ना ले और हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बोल तो पाते नहीं है, बस अपनी भावनाओं को ऐसे ही झलकाते हैं जो कि हमें समझनी होती है। तो मैम, जैसे आप फील्ड में काम करते हैं, तो आपको किस तरह से जो है चैलेंजेस अभी भी आते हैं क्या?
0: चैलेंजेस तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने भी टाइम से काम कर रहे हो, चैलेंजेस कब कुछ ना कुछ हमेशा रहते ही हैं। जो मेजर चैलेंज है वो यही है कि जैसे अब हम सिर्फ जब डॉग पकड़ने जाते हैं, नसबंदी की बात ले लीजिए, उसके अलावा हम रेस्क्यू भी करते हैं, पर जैसे हम नसबंदी कर रहे हैं उसके लिए हमें कुत्ते पकड़ने पड़ेंगे। अभी कई बार क्या होता है कि हमें सेफ्टी अपनी भी देखनी है प्लस टीम की भी देखनी है, और जिनको पकड़ने के लिए ला रहे हैं
1: उनकी
0: नसबंदी करने के
1: भी
0: लिए उनकी भी देखनी है।
1: जी
0: अब कुत्ता भरी ट्रैफिक में 10 बजे अगर टीम निकलती है, कुत्ता डर के मारे भागेगा, गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, हो सकता है वो किसी गाड़ी की चपेट में आ जाए, हो
1: बिल्कुल
0: सकता है हमारा कोई टीम मेंबर ही गाड़ी की चपेट में आ जाए उसको पकड़ने के चक्कर। तो ये चीजें अब हम हमारा ये रहता है कि हम 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में ये काम करें, जो कि हम वैसे ही करते हैं। अभी उस टाइम कई लोग अपने घरों में ही होते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है कि हम लोग आए कुत्ता पकड़ा ले गए, और हेल्प तो ऑब्वियस है उस टाइम नहीं हो रही।
1: जी
0: तो जब हम वापस छोड़ने जाते हैं उनको पोस्ट ऑपरेशन सब केयर के बाद, तो मेजर चैलेंज यही रहता है कि यहाँ से कब पकड़ा। हालांकि हमारे पास सब रिकॉर्ड्स होते हैं, पर लोग मानने को तैयार नहीं कि वहां पर मत छोड़ो। एक और मेजर चैलेंज ये है कि पकड़वाने में बड़ी फुर्ती दिखा देंगे कि हाँ पकड़ लो, जैसे
1: लेकिन
0: कुत्ता गाड़ी के अंदर गया
1: वापस
0: वापस नहीं छोड़ना है, फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो चीज जब लीगली ही नहीं है तो हम लोग भी तो बंधे हुए हैं,
1: जी
0: हम भी वही काम कर सकते हैं जो लीगल दायरे के अंदर आता है। तो वो लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। जो और एक मेजर चैलेंज वो ये भी है कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही कॉल आया 10 मिनट में हमें
1: बाप
0: वहां पे हाजिर होना चाहिए, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तो हमारी टीम बहुत छोटी है, हम फिर भी पूरी कोशिश यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग पहुंचे, पर हो सकता है कि रेस्क्यू के लिए जब आपने कॉल किया उससे पहले किसी और का कॉल आया, वो भी इमरजेंसी हो, तो टीम उसके लिए निकली है, तो जो पहले कॉल आया था उसको उठाने के बाद ही दूसरे तक पहुंचेंगे।
1: जी
0: तो लोग कोऑपरेट करने की बजाय कई बार हमें बहुत बुरी बातें बोलते हैं, जो हमें भी ऐसा लगता है कि एक हेल्प जो सोसाइटी की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं है, पर सामने से जो है वो नेगेटिव सा फीडबैक आता है, तो हमें भी कई बार डिसहार्टनिंग लगता है कि यार इतना करने के बाद भी ऐसा हमको रिस्पॉन्स मिलता है। वो हमें समझ आ जाती है कि चलो ठीक है, आपने देखा कुत्ता घायल है, आप इमिडिएटली हेल्प करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग दूसरे एंड पे काम कर रहे हैं, जो कि हम हैं, वो भी इंसान ही हैं और कहीं ना कहीं आपके बीच में से ही आते हैं।
1: जी
0: हमें भी कोई वैसी पावर्स नहीं है, कोई उस तरह की ट्रेनिंग हमने भी नहीं ली थी, ये विद टाइम और ट्रेनिंग्स है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, बट सोसाइटी का जो हेल्प और सपोर्ट है वो हमेशा रिक्वायर्ड रहता है, चाहे
1: बिल्कुल
0: हम कितना भी काम करें।
1: जी
0: ये मेजर सिर्फ ड्रॉबैक्स रहते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा मैम ने, कि जो सोसाइटी का जो है सहयोग खासकर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे ये जो है आपके वहां के, चाहे कुत्तों को पकड़ने की बात है, चाहे उनकी वैक्सीनेशन की बात है, चाहे उनकी नसबंदी की बात है, क्योंकि ये उनके लिए अननोन है और आप उनके लिए नॉन है। तो अगर आप उनके लिए हेल्प और सिर्फ ले जाने में हेल्प करें, वापिस लाने में ना, तो ये भी गलत बात है। तो हमें हर चीज को समझना चाहिए, और इंसानियत होने के नाते हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैम, आप जैसे अगर कोई आपसे बात करना चाहे, कोई भी अगर जानकारी देना चाहे, या कोई
0: जी,
1: हेल्प आपसे लेना चाहे, तो वो कैसे ले सकते हैं और कहाँ आ सकते हैं?
0: हमारा जो शेल्टर है वो रक्कड़ रोड पे है, स्लेट गोदाम रोड पे।
1: जी
0: आप अगर विजिट करना चाहें तो गूगल मैप्स पे आप डाल सकते हैं और आपको इजीली पहुंचने में हेल्प हो जाएगी।
1: जी
0: हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो कि 9882858631। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ये 9 to 5 ऑल वर्किंग डेज पे ओपन होता है
1: जी।
0: और इस पे आप अपने विजिट का टाइम भी बता सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहते हैं जैसे कि हमारे कैंप्स कब लग रहे हैं या गाड़ी कब आएगी या कोई रेस्क्यू रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप इसी सेम नंबर पे कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
1: जी। तो बहुत ही खास जानकारी दोस्तों आप सभी तक पहुंचाई है, और हर किसी का समय अपने अपने लिए कीमती होता है अपनी अपनी जिंदगी में, फिर भी हम जो है समाज सेवा करते हैं, लोगों के लिए अपना योगदान देते हैं, तो लोगों से भी यही उम्मीद की जाती है कि वो भी हमें कॉपरेट करे। बस इतनी सी बात होती है, ज्यादा तो कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहे, कोई आपका टाइम नहीं मांग रहे, बस थोड़ा सा कॉपरेशन ही मांग रहे हैं, और शायद आपके कॉपरेशन से जो है किसी की जिंदगी संवर जाए, क्योंकि कुत्तों में भी जान तो होती ही है ऑब्वियसली, तो उनके भी कुछ इमोशंस होते हैं, तो अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी अपनापन देंगे वो पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ आपके जो है हर सुख दुख में साथ देंगे, इतना उन पे विश्वास किया जाता है। तो इस बहुत ही खास जानकारी के साथ अब थोड़ा सा समय हो गया है हमारा दोस्तों से अलविदा लेने का, तो जाने से पहले आप क्या मैसेज जो है सोसाइटी के लोगों को देना चाहेंगे नसबंदी से संबंधित, आपका क्या कहना है लोगों के लिए?
0: सो जाने से पहले हम यही कहेंगे कि आपको आप प्लीज नसबंदी करवाइए, हमसे कांटेक्ट करिए या फिर नियरेस्ट जो भी आपके पास एनजीओ है वहां कांटेक्ट करिए। आप फीडिंग जरूर करवाइए डॉग्स की, जिस जगह में फीडिंग करवा रहे हैं उस जगह को प्लीज क्लीन करिए, क्योंकि ये भी एक कंप्लेन आती है। और डॉग्स की वैक्सीनेशंस का स्टेरिलाइजेशंस का पूरा ध्यान दे। और जाने से पहले मैसेज, थैंक यू सो मच रुचिका, और हम यहाँ आज चौथी बार आए हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, एंड होपफुली हम आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू।
1: मैम आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी बस नसबंदी से रिलेटेड मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो थोड़ा सा अवेयर रहिए कि जब हम लोग कैंप लगा रहे हैं आप उस टाइम पे आप हमारी हेल्पलाइन पे जरूर कांटेक्ट कीजिए, और आप तक हम जरूर पहुंचेंगे, और ये जो भी आपको लगता है इमीडिएट सॉल्यूशन तो हम भी नहीं दे पाएंगे, पर हाँ आने वाले कुछ सालों में अगर आप हमारे साथ सपोर्ट करते हैं और हम इसी पेस पे काम करते रहते हैं तो आई एम श्योर कि जो धर्मशाला की पॉपुलेशन है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। जो भी लोगों को कुत्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कई लोगों को नहीं पसंद हैं डॉग्स, तो जब आपको कम दिखेंगे तो लड़ाई झगड़े आपस में भी कम होंगे, जो कम्युनिटीज में भी आपस में प्यार बना रहेगा, और डॉग्स भी जो है वो सेफ एनवायरनमेंट में अपनी जिंदगी जिएंगे।
1: जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडियो मंजू धर्मशाला। तो दोस्तों अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो आज की इस बहुत ही खास बातचीत में आप सभी ने जाना कि नसबंदी क्यों जरूरी है और क्या क्या चेंजेस अभी हुए हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। तो एक इंसान होने के नाते सिर्फ किसी के साथ गलत करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अच्छाई भी हम सभी के अंदर कूट कूट के भरी है लेकिन हमें दिखती नहीं है, वो अलग बात है। तो जरूर दोस्तों जो स्ट्रीट डॉग हैं या फिर घर पे आपने रखे हैं जैसे उनकी केयर करते वैसे ही बाकी डॉग्स की भी केयर करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक के अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी

मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
7: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
7: Oh no! तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
8: हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
7: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
9: Oh no!
7: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
8: हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।
10: नहीं बना।

91.2 MHz पर ये तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गणेश शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक ताशो तो पहले तो तुहां सारियां दा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है। कने जितने भी श्रोता लाइव फेसबुक कने जुड़े न तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है। कने तुह सारे जो ही नमस्ते है। कने तुह सारे ठीक ठाक होने न। कने अगर अहां मौसम दी गल करिए ता मौसम जड़ा से बड़ा सुहाना बनया। कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकदे। कने अहां कने गल बात जड़ा से जरूर करी सकदे। कने अपने अपने शहर अपने अपने गाँव दा जड़ा मौसम है सभी जरूर रेडियो दे माध्यम कने जड़ा से तुहां पहुंचाई सकदे कि कुथु कुथु जड़ा मौसम है से किस प्रकार बनिया। कने किस प्रकार जड़ा से बरखा लगी पियो है या मौसम जड़ा से थोड़ा बदल छयन या तूफान जड़ा से चल लिया है। तशो तो ये सफर तुहां तक रहना है 2 से 3 बजे तक। तुहां सारे भी इस सफर कने जुड़ी सकदे। तशो तो गलबात अहां हमेशा इस कार्यक्रम च कर देन तुहां कने भी गलबात अहां कर देन। अगर आज अहां गल करिए अहंकार दी तशो तो बोलने वास्ते तो ये बड़ा छोटा दिया लफ्ज़ है अहंकार। पर अहंकार एक ऐसा मेहमान है से ओंदा ता किला पर जानदा से अहां कने बड़ा कुछ लेकर ही जानदा। थोड़ा दिया सोच विचार करके दिखा कि क्या क्या लेकर ही जानदा। अहंकार जलू आंदा है तलू अहां हमेशा अपना अहंकार च अहां बड़ा कुछ जड़ा से खोइन देन। चाहे से अहां दे रिश्ते न चाहे से अहां दा सम्मान है चाहे से अहां दा अपमान है से सब कुछ कने ही जड़ा से ले आंदा है। तो अपनी जड़ा अहंकार है अहंकार जो थोड़ा दिया साइड च रखा कने जड़ा अपने संस्कार हैं उना जो अपने सोगी रखा। क्योंकि हाँ हमेशा संस्कार कने जड़ा अहंकार हैं तिना पर गलबात जरूर कर देन। पर अहां दी जिंदगी च क्या मायने रखदा है अहां दे संस्कार। अगर अहां अच्छे संस्कार अपने अंदर रख देन या अपने माता पिता दा मान सम्मान कर देन तो कुथी ना कुथी अहां हमेशा अपनी जिंदगी जो सफलता दी ओर लेकर ही जान देन। तो अहंकार ऊपर आज हाँ जरूर जड़ा गल बात ऐसे करनी है। कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहाँ कने जुड़ी सकदे। जुड़ने वास्ते जड़ा हाँ दा नंबर है से तो हाँ सारी नोट करा। नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर तो हाँ कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। शुरुआत आगाज अहां कर देन तुहाई नहीं रेडियो गुंजन धर्मशाला कने जुड़े रहना है। कने अपने जेड़ा प्यारे प्यारे पहाड़ी गीत हैं सभी तुहाई इंजॉय करने न कने चल देन तुहां तक पहुँचा देन इस प्यारे दे गीत।

0: गीत जो प्यारी दी शुरुआत जो तुह सारे भी इंतजार जरूर करते न पर आंदे पहले जेड़ा श्रोता न तिना कन्या हा करदे न गल बात। हेलो
1: नमस्ते सचि जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न? जी तुह कुथु ते बोला दी कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: मैं चमंडा ते बोला दा जी, सुभाष जी।
0: जी चमंडा ते सुभाष जी बोला दे।
1: हांजी हांजी
0: जी। सुभाष जी आज कना जेड़ा मौसम है, पहले मौसम दे हाल चाल तुह ते पुछी लेंदे ना जी। चमंडा दे क्या जी
1: मौसम? चमंडा बरखा लगी हो
0: जी? अच्छा बरखा जेड़ा से चमंडा लगी पी हो बरखा?
1: हांजी हांजी
0: जी। कितनी के लगी हो बरखा, ज्यादा लगी हो कि थोड़ी लगी हो?
1: पहले तो खरा सी यार तराड के ना, उन ज्यादा थोड़ी आ गई
0: जी। जी तो गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली कि नहीं मिली?
1: बड़ी बढ़िया जी।
0: जी सुभाष जी आज यहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा दे न तो हाँ जरूर सुनी ली होनी है या नहीं सुनियो तो हाँ जरूर तुह तक पहुँचा दे न कि अहंकार जेड़ा से अहाँ कन्ने सिर्फ किला होंदा ना जी। अहंकार जेड़ा से अहाँ च एकदम आई आंदा पर जालू से अहंकार थोड़ी देर बाद चली आंदा तो से अहाँ दे सब कुछ छीनी करी ले आंदा ना जी।
1: अहंकार तो करना नहीं चाहिदा जी।
0: जी
1: अहंकार तो बड़ी बुरी चीज है
0: जी।
1: अहंकार तो ले जाता एक दिन, मतलब अहंकार तो बड़े बड़े टूटी बड़े बड़े टूटी जाता अहंकार
0: जी।
1: अहंकार तो कभी करना नहीं जिंदगी च
0: जी। जिंदगी च कभी भी अहंकार जेड़े ऐसे नहीं करना ना जी।
1: नहीं करना चाहिए जी, अहंकार बुरी चीज है जी।
0: जी क्योंकि जिंदगी
1: सारे कने प्यार दी गल करना चाहिए, प्यारे कने सब कुछ मिली जांदा कने अहंकार करी के तो सब रिश्ते टूट जांदे
0: जी। ये तो सही तुहां गल बोली कि प्यारे ने हर चीज अहां जो मिली जांदी, चाहे से अहां दे रिश्ते न चाहे से कोई भी है काम, अगर अहां मिली जुली करी कोई काम कर दे न तो इस कम दा करने दा भी मजा आंदा ना जी।
1: हां जी प्यारे कने हर काम हो जांदे, हर हर हर गल्ला दा हल हो जांदा
0: जी। जी जी ता सुभाष जी।
1: हां जी
0: जी जी ता आज तुहा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: चंबे पटने दो बेड़ियां।
0: जी चंबे पटने दो बेड़ियां
1: जी।
0: ये गीत ए फरमाइश तुह तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद जी।
0: जी दर्शो तो कर दें अपने कार्यक्रम दी शुरुआत आगाज इस प्यारे दे गीत कन्ने।

ये तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दोस्त शशि कहने तुहा सारे ये गीत एंजॉय कीता कने इसी गीत कने आहा फिर ते वापिस अपनी गलबात ऊपर आइयो ने इंतजार तुह जो रहंदे कि कालू दिया दो बज दिन कने कालू दिया हां इस सफर कने जुड़ दिन त श्रोताओं अगर तुह इस सफर कने नहीं जुड़ियो न तो जल्दी जल्दी क्या करा सफर कने जुड़िया क्योंकि ये सफर 3 बजे तक रहना है तुह जरूर इस सफर दे हम सफर जड़े से जरूर बनी सकते कने आज यहाँ जेड़ा गल बात करा दिन से करा दिन अहंकार दी बोलने वास्ते तो छोटा दिया लफ्ज़ है पर छोटा दिया लफ्ज़ जड़े से कई दुख जड़े से अहन जो दे कर जानता है हर कोई यही जानता है कि जिंदगी च हर रिश्ता जड़े से प्यार भावना नहीं चलना है या रिश्तों च जड़ा मिठास है से हमेशा रह ता से किन्ना रही सकती से तुह सारे जो ही पता है कि किन्ना रही सकती प्यारे ने बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है या अपने जड़ा संस्कार हैं से अच्छे रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है से तुह सारे जो ही पता है तो इसी कन्ने अगे बढ़ दिन कन्ने अगली जड़ा फरमाइश फर्स्ट फरमाइश जड़े से तुह तक पहुँचा देन तुह सारे भी इस फरमाइश जो इंजॉय करा कने इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने फरमाइश हाँ जो आई हुए चमंडा डांटते करे तिना दा नाव है सुभाष जी तिना तक कहाँ गीत पहुँचा देन

0: माटी दी महे कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तो हाँ सारे ये गीत इंजॉय की ता कन्ने फिर ते हाँ वापिस आई ना अपनी गलबात ऊपर एवी तो हाँ तक पहुँचाई दे ने कि इस गीत की फरमाइश हाँ जो कुते आयु थी इस गीत की फरमाइश हाँ जो आयु वे चमंडा ते कने तिना दा नाव है सुभाष जी तक हाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया तशो तो अहंकार दी यहाँ जिड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न कने समय भी अपना जिड़ा रफ्तार लेकरी चलिया है 2:21 कार्यक्रम च होइया न कने तो हाँ सारे भी कार्यक्रम दे सफर च अहाँ कने जुड़ी सकदे अहंकार ईगो दी अहाँ गल करिए तो अहाँ हमेशा यही सोचते न कि अहाँ कोई भी काम जिड़ा से अहाँ करी सकते न या अहाँ हमेशा ये सोची करी चलते न कि कोई भी काम में से हमेशा अहाँ ही करी सकते न अगर अहाँ अपने रिश्ते च अहंकार रख देन तो कुछ ना कुछ अहाँ रिश्ते जो जड़े से बचाई नहीं पाते न अहंकार जड़े से हमेशा अहाँ जो कोई ना कोई सीख जड़े से ज़रूर दे करी जाता है गुस्सा जड़े से पल भर वास्ते होंदा पर अहाँ जो नुकसान कितना देख रही जाता से तो हाँ सारे जो ही पता है तो हाँ ज़रूर सोच विचार करा दोने न कि गुस्सा जड़े से अगर अहाँ किसी कने गुस्से ने गलबात कर देना कने गुस्से ने कुछ कुछ बोल देना तो अगला व्यक्ति जड़े से कुछ ना कुछ तीसा गला ते प्रभावित जड़े से ज़रूर होता है कने प्यार अपनापन हमेशा हर कोई यही चाहता है कि प्यार हमेशा जड़े से रह तो प्यार ता ही रह सकता जालू अहाँ जिंदगी दे सफर च छोटे छोटे जड़ा लम्हे न तिना जो इंजॉय करते न बच्चों की अहाँ गल करिए या युवा पीढ़ी की अहाँ गल करिए ज़्यादातर हर समय अहाँ अपना जड़ा टाइम है से कुथू लगा दे मोबाइल फोन च सोशल मीडिया पर अहाँ हमेशा चाहे अपने कन्ने गलबात करा दे न तमी अहाँ अहाँ जो ये पता नहीं है कि अहाँ फैमिली कन्ने बैठे हो ना तो अहाँ अपने ही बिजी हैं मोबाइल फोन च बिजी हैं अगर अहाँ खाना बना दे ना तभी अहाँ जो खाना बनाने की परवाह नहीं है अहाँ जो पहले मोबाइल फोन चलाने की जड़ा आदत है या अहाँ खाना बनाना जड़े से पहले नहीं समझते अहाँ फोन चलाना जड़े से पहले समझते तो हर चीज़ समय के अनुसार अच्छी लगती है खाना अगर तो हाँ पूरी लगन मेहनत ने बनाते न तो ज़रूर इस खाने च जड़ा स्वाद है सभी बेहतर होंदा है कने बुज़ुर्ग जड़े से हमेशा हाँ जो अच्छी जड़ा शिक्षा है से दिंदे न कि बड़ियां दा मान सम्मान करना है कने कोई भी काम करना है से काम अगर अहाँ पूरी लगन मेहनत ने करा दे न ताई से काम जड़े से अगे बढ़ता है कने अहाँ जो इस कमे च सफलता जड़े से ज़रूर मिलती है पर कई बार होंदा ना कि अहाँ कोई भी काम कर दे न कने अहाँ काम करा दे न तो इस कमे जो अहाँ अहंकार कने करा दे न तो से अहंकार अहाँ दा कुछ ना कुछ अहाँ दी जिंदगी जो जड़ा सीमित है से ज़रूर करींदा है ताशो तो माटी दी महे कार्यक्रम बिल्कुल लाइव है तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहाँ कन्ने गल बात जड़े से ज़रूर करी सकते अहंकार दी जड़ा गल है से अहाँ आज लगाई हुआ है कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी करी जड़ा अपनी गल बात है से ज़रूर अहाँ तक पहुँचाई सकते कन्ने अगले जड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर दे न गल बात हेलो
1: हेलो नमस्ते मैडम
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: हां जी
0: जी तुहां कुथू ते बोला दे कने तुहां दा नाम के है जी
1: मैं योल ते बोला अरविंद नाम मेरा
0: जी योल ते अरविंद जी जी अरविंद जी आज कदेया मौसम है योल च
1: मौसम बरखा भी है कने थोड़ा ओले

0: जी, ता क्या काम कर तू हाँ छेड़िया क्या करा दे।
1: मैडम मैं थोड़ा बीमार था, मेरा एंकोलोजी स्पेंडोलाइटिस था, तो मैं घरे दा करदा काम।
0: जी अच्छा, घरे दा ही काम जेड़ा है से कर देना।
1: जिला अपना होंदा रुका फुरका काम।
0: जी, ता रेडियो ने भी तो हाँ अपना जेड़ा मन है से भी लगाया होना ना जी।
1: हाँ जी, थोड़ा फ्री रहता था, विच सुन लेता
0: जी। ता कदे लगदा तो हुन जो ये कार्यक्रम
1: प्रोग्राम में सारे सुनदा नहीं के बड़े बढ़िया लगदे ने जो भी दबा टीवी दे जेड़े भी हुंदे ना।
0: जी जी अच्छा, सारे प्रोग्राम सुन दे तो हाँ।
1: हाँ जी,
0: सारे जेड़ा रेडियो स्टेशन हैं सुन दे रहें दे प्रोग्राम तो हाँ ना जी।
1: हाँ जी हाँ, जेड़ा इनके लिए लग गया है ना, चल टाइम है फ्री तो जी, लंदन में।
0: जी जी, क्योंकि रेडियो दे एक अहमियत है ना हाँ दे जीवन च, अहाँ अपने काम भी करी सकते, कन्ने रेडियो दा ये नहीं है कि अहाँ जो कन्ने ही बैठना पौना है, कि जिना टीवी है तो टीवी दा ये होंदा कि अहाँ जो बस एक ही जगह बैठाई हुंदा, कन्ने बस टीवी अहाँ दिखते रहते, कन्ने अहाँ दा समय दी बर्बादी भी जरूर होंदी ना जी।
1: बहुत ही बढ़िया है के ये है ना साधन
0: जी,
1: बोले मतलब टाइम वेस्ट भी नहीं, पैसा नहीं बर्बाद कि हाँ कोई यूट्यूब चलाना
0: जी जी,
1: क्रिश्चियन के पैसा लगना है
0: जी जी,
1: ऐसा वैसा कुछ नहीं है इनके, कने जानकारी भी इनके हरेक व्यक्ति कने इनके प्रोटेक्ट के अंदर इनके दिया और बंदे दे भी इनके हाँ सुनी सकते हैं इनके
0: विचार जी। तो आज तो हाँ कुंदिया गीत जेड़ा से सुनना पसंद करके
1: कुंजू चंचलो दा सुनाई नहीं उंजू टाइटल
0: जी। अच्छा, कुंजू चंचलो दा जेड़ा गीत ऐसे सुनना है तो हाँ जी।
1: हाँ जी
0: जी, जरूर तोहां दी जेड़ा फरमाइश है से तोहां तक पहुंचा दें जी, चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तोहां दा जी। ए है तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तशो तो बड़े दिन अपने कार्यक्रम च अगे कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तोहां तक पहुंचा दें। अगली जेड़ा फरमाइश है से यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने, तो हाँ सारे भी इस भजन जो इंजॉय करा।

यह है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे सुनिया एक गीत फरमाइश। ये फरमाइश अहां जो आई हुए योर ते कने जरूर तिना तक कहां ये फरमाइश भी पहुंचाई कने तुहां सारे भी इंजॉय की थी।

दर्शकों आज यहाँ गलबात करा देन अहंकार पर। अगर अहंकार की जड़ा गल है से अहाँ करना तो सोचना बड़ा ज़्यादा जरूरी है या एक दूए अंदर प्यार भावना जड़ा होना बड़ी ज़्यादा जरूरी है। संसार की अहाँ गल करिए अहाँ जो हमेशा क्या करना चाहिए हमेशा अहाँ जो सुई बनी करी जड़ा से रहना चाहिए। हूँ तो सोचा दे होने कि सुई बनी करी कजो रहना चाहिए। सुई बनी करी इन्ना रहना चाहिए क्योंकि कैंची बनी करी अहाँ रेंदे न ता क्या अहाँ जो दिखने जो मिलता है सुई बनी करी रेंदे न ता क्या अहाँ जो मिलता है। सुई जड़ा से दो जड़ा से जोड़ी दी है दो जड़ा कोई भी अहाँ का बस्तर है से फटिया उस जो भी सी लेंदी है पर कैंची जड़ा से अगर दो एन तीन जो एक करी दी है तो इसी प्रकार चाहे अहाँ दे मित्र हैं चाहे से अहाँ दी रिश्तेदारी है चाहे से अहाँ का सम्मान है चाहे से अहाँ का भाव है से हमेशा सुई की तरह होना जरूरी है। दिले ने अगर अहाँ कोई भी काम कर देन तो बड़ी अच्छी गल है कने अगर अहाँ हमेशा अपना फायदा दिखी करी कोई काम कर देन या कैंची हाई है उस चीज़ जो कटिंग देन तो कुछ ना कुछ से अहाँ दे रिश्तिया पर या अहाँ दे जिड़ा मित्रता है दिशा पर प्रभाव जड़ा से जरूर पाती है। तो शुतु इसी कन्ने अहाँ अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न। अगली फरमाइश भी अहाँ जो व्हाट्सएप के माध्यम ने अहाँ तक पहुँची हो चल देन सुन देन इस प्यारी दिया फरमाइशा जो।

दर्शकों सारे सुनिया ये गीत ये फरमाइश। इस गीत की फरमाइश जहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने, तिना का ना भी जरूर तुह तक पहुँचाते हैं। तिना का नाव है चरणदास जी, कहने से रहने वाले न थन्यारा ते, तो जरूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाई, कने जितने भी बाकी श्रोता न तिना भी ये फरमाइश इंजॉय की थी, कने माटी दी मह कार्यक्रम भी जरूर जेड़ा इंजॉय है से करा देन। फिर ते तो जो एक बारी स्वागत कने जेड़ा तो हुंदा नमस्ते है से कर देन, कने इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से यहाँ बार बार तुह तक पहुँचा देन कि 2 से 3 बजे तक है। तो अहाँ प्रकृति की गल करिए, बार बार अहाँ प्रकृति उपर जेड़ा कोई संदेश है से हमेशा देंदे न, एक दिन ही यहाँ प्रकृति की जेड़ा रक्षा है से नहीं करनी है, क्योंकि प्रकृति का दिन हर दिन है। जिन्ह की जिंदगी का सफ़र अहाँ किस प्रकार इंजॉय करते न, तिना ही अहाँ वास्ते ये जेड़ा प्रकृति है कितनी जरूरी जेड़ा है से रखती है। सूर्य की अहाँ गल करिए, बिना भेदभाव करने सूर्य जेड़ा है से अहाँ जो प्रकाश दिंदा है, कने वृक्ष की अहाँ गल करिए बिना अपेक्षा क्या दिंदा, थोड़ा जहा सोच विचार करा कि क्या दिंदा तुह जो वृक्ष, वृक्ष जेड़ा है से अहाँ जो बिना अपेक्षा छाया दिंदा, कने नदियाँ, नदियाँ जेड़ा है से रुकने का जेड़ा ना वह से नहीं लैंदियाँ, से हमेशा बहदियाँ रहनियाँ, कने अहाँ जो पानी जेड़ा से दिंदियाँ, पर अहाँ किस प्रकार अपने जेड़ा नदी नाले न तिना दी रक्षा जेड़ा से करा देन। प्रकृति जेड़ा से अहाँ जो हर क्षण ही सिखाती है कि अहाँ किस प्रकार अपने जीवन जो बचा देन, या अपनी प्रकृति जो बचा देन, या अपने जेड़ा नदी नाले न तिना जो बचा देन। तो ज़रूर प्रकृति देने ते पहले ये नहीं सोचती कि मैं मनुष्य जो क्या दे दी है, पर मनुष्य जेड़ा से हमेशा सोच विचार करता है, कने अपना जेड़ा अहंकार है से जरूर रखता है। ताशो तो अहंकार जो हमेशा साइड रखा, कने अपनी प्रकृति की रक्षा जेड़ा है से जरूर करा। इसी कने अग्गे बढ़ते न, कने अगली जेड़ा फरमाइश है से अहाँ जरूर अगले श्रोता तक पहुँचानी है। सभी अहाँ तक पहुँची हुए टेक्स्ट मैसेज दे थ्रू तो हाँ सारी भी इसा फरमाइशा जो इंजॉय करा, कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

जानवी जी की फरमाइश की तहां तिना तक पहुंचाया कने से रहने वाले ने मेला ग्राउंड पटोला ते तिना तक कहां एक गीत फरमाइश पहुंचाई कने तुहां सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। ताशो तो इस सफर च अहां जिहड़ा अज गलबात कीती है से कीती है अहंकार दी, तां जरूर तुहां इस पर सोच विचार जिहड़ा से करना है कने अपने अंदर हमेशा सकारात्मक सोच जिहड़ा से रखनी है कने अपने माता पिता का जिहड़ा मान सम्मान है से जरूर करना है कने रिश्तियां च जिहड़ा मिठास है से भी रखनी है क्योंकि रिश्तियां च मिठास होंगी ताई तहां अपने जीवन जो और भी क्या बेहतर जिहड़ा से बनाई सकते। दर्शो तो इसी कन्ने तुहां सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति क्योंकि समय जिहड़ा से अहां जो हुण बोला दा कि तुहां हुण इस कार्यक्रम ते अनुमति जिहड़ा से ले लिया, समय जिहड़ा से कुसी वास्ते नहीं रुकदा पर समय दे अनुसार चलना अहां वास्ते जरूरी है। समय दे अनुसार चलदे न कने तुहां सारे जो ही जिहड़ा से यही बोलना चाहते कि अपना भी ख्याल रखा कने अपनिया दा ख्याल जिहड़ा सभी रखा कने अपनी रेडियो दो शशि जुदेया अनुमति।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
6: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
7: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
8: Oh no!
6: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
7: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
7: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
9: Oh no!
7: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
8: हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

0: नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बच हुआ कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर। नमस्ते, क्या हाल चाल ने तुंदे सभी रहे? उम्मीद करनो है तुंदे सभी रहे हाल चाल ठीक ठाक बुने, तो सब खुश बुने, तंदुरुस्त बुने और अपने घर की सो आनंद ले कर दे बुने, मजे अंदर बुने छो तो है ना। हमेशा बोलो, रोज़ बोलो कि खुश बुना कि सो बेहद ज़्यादा जरूरी है लाइफ में जिंदगी मंच। तो श्रोतो तो सब श्रोता के अनुश्वास हो गए कनेक्ट बुझ सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत की सो हो नहीं सकते और अपने क्षेत्र जानकारी की सो साझा कर सकते हैं। यह गलारा अब बिल्कुल खास ख्याल रहे श्रोताओं की जानकारी की सो साझा करने लायक बहुत जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर बो है ना जी। और कॉल करी करी तो है अपना पसंदीदा गीत भी हो नहीं सकते ना और अपने क्षेत्र जानकारी जरूर होगी शेयर कर सकते ना। नंबर 7018889 पर यह तुम्हें अपना गादा कार्यक्रम में श्रोताओं इस कार्यक्रम में तो है सब श्रोतक सो जुड़ी सकते हैं। बहरहाल मौसम री जानकारी सभी पहले है तुसु तक पहुँचन दे हिन श्रोतों पर तथ्यों पहले इन दे श्रोतागण असो के कनेक्टेड हिन और मौसम सोगी सोगी श्रोतों काफ़ी हसीन और ये धर्मशाला हा ये वाकई में ये धर्मशाला की इडिया रेतु है हेरी लेके बेगा किया सो मुझे ये लगता कि टेम्परेचर आई थिंक 30 अब तक होना है बेगले ने प्यार है ना 12 साढ़े 12 आठ बजे तक तूने गए टेम्परेचर तथ हो थोड़ी तो और तथों बाद एकदम ही किया सोए सो बोलते ना मतलब जज्बात बदले गए, तख्त बदले गए, ताज बदले गए सो हिसाब हुआ धर्मशाला रे मौसम रह गया एकदम ही सब कुछ किया सो बदले गए और एकदम थो बारिश किया सो लगना शुरू हुई धौलाधार पर्वत एकदम ढके गए काले बदला हो गए और बरखा किया सो लगना शुरू हो चुके है ना। तो ये धर्मशाला है इतियो धर्मशाला बल देने प्रकृति री बड़ी देन है असु सब भी जो धर्मशाला आयो लेकिन यह धर्मशाला में जो बाशिंदे हिन सो है गल्ला जो बाखूबी समझेगन तो बड़े अच्छे गल है बड़े यादगार गल के श्रोतों ये रहने हैं। तो ये इन श्रोतागण असु के कनेक्टेड हिन उस दिन गुण बलून देन और कड़ी थो बलून देन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते ठीक ठाक जी।
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी। तो सर ठीक ठाक सर जी।
0: बढ़िया जी यह भी ठीक ठाक न कौन बल्लू कर देन और कड़ी थो बल्लू कर देन।
1: सुनील कुमार बोल रहे कोठियां जलोड़ते सर जी।
0: अच्छा कोठियां जलोड़ थो सुनील कुमार जी बल्लू देन।
1: हाँ जी सर जी।
0: सुनील कुमार जी भोए दिन के किनारी भी बरखा कोठी कोठियां जलोड़ किनारी
1: तूफान तो बड़ा आया सर जी नहीं हुई मतलब किनी किनी हुई बरखा।
0: अच्छा
1: जी बरखा नहीं हुई करी अपनी गिनती किनी किनी हुई।
0: अच्छा अच्छा
1: जी तूफान तो बड़ा चल रहा हूं बंद हुई है सर जी।
0: अच्छा
1: तूफान
0: पर इडी धर्मशाला में किया सो काफी ज्यादा बरखा भी भोया तूफान भी चल रहे थे माड़ा मोटा और बरखा भी
1: अच्छा अच्छा
0: काफी ज्यादा भोया।
1: अच्छा
0: जी
1: ईश्वर दी माया ना सर जी कहीं धूप कहीं छाया
0: बिल्कुल बिल्कुल ईश्वर री माया है ता
1: हां जी सर जी।
0: और कदे लगदा सर तुसु कार्यक्रम में अपना गदेयाली कार्यक्रम
1: बहुत अच्छा लगदा सर जी जितनी तरह तारीफ करी उतनी कम है सर जी।
0: अच्छा
1: हां जी हमारा पहाड़ी प्रोग्राम बंदा है भी बड़ा अच्छा लगदा
0: बिल्कुल
1: गदेयाली प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगदा
0: सै साड़ी गदयाली अंदर ही बोलूं सो कार्यक्रम
1: गदयाली जी बोली थे सर जी।
0: हाँ जी
1: समझी तो जानते हैं पर बोलना नहीं होती सर जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल यही तो प्यार है यही तो भाव है जी ये प्यार है तो ये भाव ही तो सच्चा है
1: हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: सो प्रोग्राम किया सो इन दी आरजे शशि
1: शशि मैडम जी।
0: हाँ जी बहुत मीठी आवाज है बहुत प्यारी आवाज है
1: बहुत अच्छी नुमा है बहुत जितना भी स्टाफ है तो उनका पिंकी मैडम जी रुचिका मैडम जी ज्योति पठानिया जी और सचिन सर जी हुई ये शशि मैडम जी हुई ये इतनी मधुर आवाज है सर जी मीठी आवाज है
0: दुई दिन आ तो है भूल गए तैयारे भी ले लिया आपको सुमन और अक सुषमा मेहनत सब करते हैं और अपनी अपनी मेहनत सो के सब आगू बढ़ना चाहते हैं और बढ़ते हैं गुंजन वेडियो प्लेटफॉर्म में आ सके हम अपने बारे में दसो सर की मुझे मतलब बिल्कुल भी ना पता तो गल करने रहा भी ना अंदाजा था और मुझे ना आई थिंक जो होगी और भी शशि शशि बुचगे रुचिका बुचगे
1: जी
0: अपनी गल कर सकते हैं बाकी जो अनाउंसर सो तो चल रो
1: दिखा ना सर जी कोई भी काम करने दे मतलब सीखी सीखी सकता बंदा हाँ
0: बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो उसको कुछ भी ना पता था जी गल बात करने रहा इवन के माइक पकड़ने रहा पर
1: जी सर
0: चलो
1: जी।
0: इस प्लेटफॉर्म थों गुंजन रेडियो थों के आस हो है सब कुछ सीखे ना और आज जड़ी भी पहचान है इन सिर्फ और सिर्फ इस रेडियो करके ही है जी।
1: हाँ जी सर जी। बाकी तो होती तारीफ बड़े उतनी कम कर उतनी कम है सर जी। जेड़े रोन देने
0: चलिए
1: बेचारे थे ना भी असाई दे तो हाँ मजाक बहुत कट दे। हाँ
0: चलिए जी मजाक मजाक
1: जी सर।
0: के ते मजाक की असो करना चाहिए जी सेहत खरी रहती है।
1: और क्या सर जी, दुनिया चाहे हो क्या लेके जाना सर जी।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली जी बिल्कुल।
1: हाँ जी सर जी।
0: तो जनाब कुंदने गीत होना पसंद कर ले।
1: एक भजन है सर जी, सत्संग भजन है पहाड़ी। रुत्तां मुड़ मुड़ के आउणगियां पर बंदिया तू मुड़ के नहीं आउणा।
0: वाह क्या बात है।
1: हाँ जी, संजीव कौशल दी आवाज च गाना सर जी।
0: ठीक है जी
1: हाँ
0: जरूर है
1: जी
0: गीत होना ले तुसु है ना जी।
1: हाँ जी। धन्यवाद सर जी, नमस्कार सर
0: धन्यवाद
1: जी।
0: जी नमस्कार नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी।
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रहे वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस वक्त इंदी अपनी गप्पा कैन सो बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे वेडियो सेट मा ता आइया कार्यक्रम जो थोड़ा करे आगो बढ़न दें तो सब भी जरूर जुड़ी सकते हैं जी। रोजाना जी जुड़ते हैं जितने भी इंदे श्रोता सु और रेडियो मंच होनो करते हैं और जितने भी श्रोता इस समय वीडियो जो लाइव वे कार्यक्रम चल रहे थे इसी वेरो करते हैं 7088879 पर तो है कॉल कर सकते हैं। बहरहाल चलते हैं श्रोताओं थोड़ा करिए और हगूँ और धर्मशाला रहा मौसम ठंडा जरूर रहा बल्लू कर दो तो दिन है कम से कम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसोपूजी को छूरा बुना तापमान है ना। लेकिन इस वक्त रे आऊँ गल करूँ तो इस वक्त के आसो 18 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो धर्मशाला रहा तापमान हा श्रोताओं जी बिल्कुल 18 डिग्री रे आसपास धर्मशाला रहा इस वक्त रहा तापमान हा। और न मेरी गल करिए श्रोताओं जतियो अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बोलते हैं सो लगभग 70% रहे आसपास हा हाँ ए धर्मशाला रहा मौसम तैया श्रोताओं बोलते ना कि सूरज तो आंसू ए सीखने जो मिलता कि हर काली रातों बाद के आंसू उजाला जरूर बुंदा हा। जी बिल्कुल बशर्ते तुंदी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें बुझ सकदी मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें बुझ सकदी न लेकिन ये असू ये सिखंदा ये प्रकृति असू ये सिखंदे हा श्रोताओं कुदरत असू ये सिखंदे हा कि सूरज के आ सो खिलदा ही खिलदा है ना हर काली रात तो बाद गया सो उजाला बुंदा ही बुंदा। लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें बुंदी हर किसी बुंदी श्रोता लेकिन खिलाड़ी तो सो ही बेहतरीन है ना जो खेल बढ़िया खेले सका है ना। तो ऐसा दौड़ रहा हिस्सा बनना जरूरी है बेगौटी करी अपने अपने काम कार जो गाना जरूरी है क्योंकि अगर जीना तो सो तो दौड़ रहा हिस्सा किया सो तो बनना ही पैना आसू सभी जो। बहरहाल बहुत सारी जानकारी इन श्रोतों सो भी तू सो गया सु जरूर शेयर करनी ने साझा करनी ने 7088879 पर तो सब श्रोता कॉल जरूर कर सकते हैं। पर तत्थों पहले है तुसु लेके चल दे इन शोतों इस प्यारे दे गीत के सो तू सभी है जरूर हुनन देन है ना इंतजार जरूर बुना तू सभी हो। चलिए जी इंतजार तब बुना ही बुना कार्यक्रम जो थोड़ा करे हगुम बढ़ाई करे आनंद लेन दे इन शोतों इस प्यारे दे गीत तरह बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो गे गूंज अपने पन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता सोगी बुन रहे तैयारी

0: শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর ভেরি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হে সবি টিউন কর রো আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ কেন সো চল রিন তা বহুত বহুত স্বাগত আক মুকে ফিরে সবি হনে আলে রে সবি শ্রোতাগণ রা আইশো তো কার্যক্রম জো থোড়া করি আর হগো বড়ন্দে না আর কুছ এক জানকারি হোগে কি আসো তু সবি জো সাঝা করদে হিন শতো अशोतों देर में भी किया सो बढ़ना हा धर्मशाला ही है क्रिकेट स्टेडियम ब्यास कैंपस में 15 करोड़ थों तैयार भूना हा आधुनिक क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम देरा जो मोलने हैं नई खेल पहचान शोतों जी बिल्कुल पहाड़ी वाजे हिमाचल प्रदेश जो खेल रे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के सो पहचान दिलाने वाला विश्व सब थो खूबसूरत मैदान मैदान में अक धौलाधार री अक जो इन दी धर्मशाला में स्थित धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भी तर्ज पर अब ब्यास नदी के किनारे देरा माँ भी किया सो क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम बनाना हा शोतों केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला रे ब्यास कैंपस देरा माँ क्रिकेट मैदान बनाए गाने पर 15 करोड़ रा बजट किया सो प्रावधान संघ संभावनाएँ वे जमीन तलाश किया सुकर उगर दिन सीयू कैंपस देरा में बनु करदा भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जतिमा इंडोर स्टेडियम यानी मल्टीपर्पज हॉल भी शामिल है शोतों और अधिक विस्तार किया सो अधिक विस्तार वाला क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने किया सो रूपरेखा बनाऊ कर दें जत्थों देश भर रहे विश्वविद्यालय संघ हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट जो क्रिकेट खेलने जो बेहतरीन सुविधा किया सो मोलने हाँ इन द्रोतागणा सो के कनेक्टेड हैं पूछ दें यह जानकारी जो विस्तृत रूप सो के तू सब भी ओके सो
1: हेलो
0: तो नमस्ते जी नमस्ते वेड़ी गुंजन मां स्वागत है
1: नमस्ते सचिन जी
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक न
1: ठीक ठाक जी ठीक ठाक
0: और करे लगुरिन जी कैलूरा कमाना हाँ हाँ बहुत खतरनाक बरका ना पर ठंड पेगी गर्मी मुल्क थे बेगा
1: अब चलो आओ ना लगे शुक्रा
0: हाँ जी हाँ जी आओ ना लगे ना
1: अता
0: अबे जी ये दो त्राई दिन ना मौसम इन्ना ही रहना चलो जी और नोई ताजी जी सब ठीक ठाक राजी बाजी
1: हां जी ठीक है राजी बाजी सचिन जी मुगा हूं ना काम तेरी बंसरी बजे
0: शाम तेरी बंसरी बजे
1: हां जी
0: क्या बात है तुंदे फुक प्राण तो कुछ गल दसू कर दे थी कि तुंदे फुक प्राण की सो कड़ी की छिड़न दे ने
1: रो के छिड़न दे स्लेप ताला का हैला वाला घर है ना मेरा
0: हां जी हां जी तूफान
1: मुंदे
0: थी अजो 20 साल पहले रे अगर गल करो ता अच्छा तू ना बुंदे थी
1: हां जी
0: इंदे ते सब भी रहण वाला घर बुंदे थी तो तू ना अगर तू ना तूफान बुंदे तो कितना ही असु नुकसान बुना तू है ना जी कितना ज्यादा नुकसान हां
1: बड़ी शरीफा ना घर पर शरीफा
0: काफी ज्यादा
1: ए ब्रक के ने उधर है और तू ना
0: हां जी
1: दुआ है ना मेरा घर जाओ पर मेरी जाओ तो के बाद फुल जाएंगे
0: बिल्कुल ले रहा जी दिल के ऐसो मोटा बुना चिंदा और दिल के ऐसो खराब बुना चिंदा कि ये ले आऊं तू सो दसना चांदा कि ये ले के ऐसो लख प्यूरे ने करोड़ प्यूरे ने तथ्यों बावजूद भी सो बल दे ऐसो ले आए कुछ नहीं है
1: तो का गाल तनन तुस्ते बुना चाहिए
0: हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली और मुझे ये लगता कि मतलब अगर तू सुले हा और भगवान ने तू सो दितुरा तो चलो मनोरे की ऐसो मदद करना चाहिए है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ बिल्कुल मदद करना चाहिए पर आजकल सो जमाना नहीं है ना जी आजकल ईमानदारी का जमाना ही नहीं है ना
1: क्या पता ना जाएगा जाएगा भगवान सी मौका दिल तो था सुबह तो मीन जा पड़ेगा क्या पता ना क्या बंदा ला सुबह दिगन बच्चे क्या बात दिगन तो कोई पता ना
0: बिल्कुल बिल्कुल अरे वक्त रहा तो
1: अरे
0: कोई पता नहीं कहना क्या है बुझ गया। अच्छा
1: हाँ जी
0: जी
1: हाँ मैं भजन हूँ ना कह सचिन जी
0: श्यामा तेरी बंसरी भजन हूँ ना तो सुहाना जी है
1: ना ना ऐसे हम मारे श्यामा तेरी बंसरी बजे
0: श्यामा तेरी बंसरी बजे।
1: हाँ जी
0: अच्छा ठीक है जी जरूर होना ले दे सो
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोता तो सब भी जुड़ी सकते ना सो गया अपना कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गया सो लाइव चल रहा तेती में जुड़ी करे अपना पसंदीदा अपना गादा कार्यक्रम में जुड़ी करे के सब अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। तो सब 7088879 पर नंबर आक मौके फिर ही तू हो गया हूँ शेयर करनो साझा करनो हाँ 7088879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। श्रोतों कुछ एक जानकारी तुसु गया हूँ शेयर करना चाहता देर आमा भी किया श्रोतों सो बढ़ना अवे धर्मशाला ही है क्रिकेट स्टेडियम जी बिल्कुल था जितने भी इन देर आ रहे लिसनर हैं जितने भी श्रोता हैं जो इस समय रेडियो मन छोड़ो कर दिन तीन सभी वास्ते बहुत बड़ी खुशखबरी है कि देर आमा भी किया सो बढ़ना धर्मशाला ही है क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल ब्यास कैंपस में 15 करोड़ थो तैयार भूना हा आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम शतों देरा जो मोलना हा नौ खेल पहचान जी बिल्कुल शतों और ये बड़ी अच्छी गल है देरा रे मनु वास्ते भी बड़ी अच्छी गल है रोजगार के असो डबल बुचगाना है ना जने जने भी मैच बुचू करते हैं तेने तेने की

स्पोर्ट्स कैंप कॉम्प्लेक्स विकिया सो बनी गचूरा बनने भी तागात पर हर्ष हो तो इंडोर स्टेडियम यानी मतलब बहुत कुछ किया सो देरा जो अभी मोलने आ रहा है ता देरा में भी बनना अवश्य होता हूँ बिल्कुल धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम ही है स्टेडियम तो जानकारी रा पिटारा किया सो तू सब भी यही हूँ दे रहना हाँ सचिन कपूर सोगे यही हेड दे रहना सचिन कपूर सोगे कार्यक्रम जो हगो बढ़न दे और लेकर ही चल दे तू सब भी जो इस प्यारे देगी तरी किनारी बनी रहे जुड़ी रहे आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रही और गूंज

स्वतंत्र सब बन रहे समय आर जे सचिन कपूर सोगी और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा कहने सो हूँ कर देना। चले जी कान हरिवंशरी बजाने तय है अपनी कान हरिवंशरी की असो बजन देन तो सब बने रहे आर जे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने बन रहे।

0: शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पावे है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी अगापा गया सो चल रही हिंद था। बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। इन पहले श्रोता अभी जो फरमाइश थे सो फरमाइश कर लेंदे पूरी का जो कि अगली जानकारी की है सो दे रहा था यहाँ दे रहा था युवक तो होती नहीं है क्या करो क्या ना करो नशा तस्करी किया सो लगातार चालू कर दिया लेकिन इंदा पुलिस प्रशासन किया सो बिल्कुल तत्पर मौजूद था श्रोतों। सो तू हो गया है ज़रूर दस ले लेकिन फिलहाल कार्यक्रम जो आगो बढ़ दे इंदा श्रोतागण भी कनेक्टेड हैं तेरी फरमाइश पूरी कर दें श्रोता तो ऐसा हूँ कर देने इस समय एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ तुस हो गए तुम्हारा अपना आरचे वेड़ी जो कि सचिन कपूर बहुत बहुत स्वागत आक मौके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। आइए श्रोता कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगू बढ़न दे और लेकर चल दे तू सभी जो श्रोता बिल्कुल इन द श्रोतागण कनेक्टेड हैं इन हो गए मिलन तुसु जो भी और तुसु जो भी। हेलो नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल है।
1: बस बढ़िया हाल से बल्ला
0: बहुत बढ़िया जी करे लगुरन कैलूरा कमाना कुन बल्लुन देन और कड़ी थम बल्लुन देन जुड़े थी जो की कंडी थो थी और बल्लू कर दे थी हैला घर और डर लग रहा गलबात जितनी भी बोया आप जो कुछ सेकंड रही है कुछ मिनट रही था मुझे ये लगो करता कि तू है भी किया सो समय जरूर है रो बुना सो दौर जरूर है रो बुना जहन है इन द सब भी रह घर क्या थी सो हैड आला थी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: तहने भी डर लगता थू कि तहने ना लगता थू या तहने इन्हें ना तूफान या इन्हें ने आंधी की सो ना चलते थे
1: डर
0: जो घर बंदे बड़े खरे बंदे और कच्चे घर है ना कितने फायदेमंद थी है जी
1: कदी बड़े फायदे हवा चली रही बाकी ठंड है गर्मी है ठंड है गर्म
0: बिल्कुल बिल्कुल और
1: ये सब बड़े बढ़िया घर बंदे
0: इतने इतने मजेदार घर बंदे थी है कि गर्मी अंदर गर्मी ना लगती थी तिया तो हीट अंदर हीट ना लगता तो है ना।
1: हाँ जी पर है घर तो बड़े
0: बढ़िया पर है मनु मैं क्या करूँ कि सब कुछ जमाने वे हिसाब हो गए कि ये सब बदली दिता
1: सब कुछ बदली तब बड़ा भारी ये ना थे क्या सोच जल्दी ना थे क्या हैरान वाला जमाना चली ना तो ये रहता तो सही थोड़े दिन हूँ
0: अच्छा सच्ची ना
1: सोच हाँ जी हाँ जी ना सोच जमाना ही ना सोच सब कुछ ही ना इलेंटर रूम का होना पहनी पूरी
0: अच्छा हम तो सोचता था चंदा जी कि ये ना इन्हें मठ हाउस बल्लू करते ना आजकल तो सो कच्चे घर ही बंदे जी इंदे थी है बुजुर्ग घर थी है इंदे हिन अल्ले भी है ना सो कच्चे हाउस ही बंदे था कच्चे घर बंदे तिन्या वास तिन्या होना तिन्या मंज रहने वास थे कि सो अंग्रेज बड़े फिदा बंदे न सो तेने तेने घर को बंदे न
1: पसंद कर बंदे तेने
0: तेने पसंद कर बंदे मिट्टी वाला अपनी रूट्स जो छड़ना लगी प्यूरे ना और जहने मनो अपनी रूट्स जो छड़ना लगी पिया ना तहने सो डग मगाए गंदा फेरे जी
1: थोड़ा थोड़ा थोड़ा चलो वाले आए ना थोड़ा मत फर्क जंक्शन से जरा थोड़ा शिक्षा देनी आएगी आप हाल देख रहे हो मड़ी अच्छा तो खरी है ना अच्छी गल।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कोशिश जरूर है और इस कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा तो हुण दिन जी कहना तो हुण दिन अपने
1: हुण देखो रोक जरा थोड़ी फोन मते दिन बाद।
0: अच्छा तो कितने साल बच गए तुसू अपने गादा कार्यक्रम हुण दे
1: गादा कार्यक्रम तो हुण दे बच गया कोई 6-7 साल होए वैसा है कि अब मोबाइल मोबाइल है बे रखे ना पहले रेडियो गाड़ी है हुण एक टाइम हुंदा हो।
0: हां जी हां जी
1: पहले जरा कम में बिजी रहंदी है कम साबे ना करी पे मणुए।
0: हां जी हां जी कदे लगदा कि रेडियो मंच अपना गादा कार्यक्रम ही है कदे लगदा
1: अपना गादा कार्यक्रम तो हुण ने रहियां चैन पे गंदे बसना था सगम पे चोर करने बैंदे।
0: चलिए जी धन्यवाद है तुंदा तहे दिल तो धन्यवाद करनो कि तुंदा आशीर्वाद है तुंदा प्यार है कि तो इतना मान सम्मान दिंदे ने इस कार्यक्रम जो
1: ना ना आशीर्वाद करनो है ना अपना कार्यक्रम है ना अपना गद्दा कार्यक्रम है ना गद्दी गल्ला कर बंदे तो सो।
0: हां जी चलिए थैंक यू सो मच जी इस नाची सचिन कपूर जो भी इतना प्यार और मान सम्मान देने वास्ते और इस कार्यक्रम जो भी। चलिए जी ठीक है जी जरूर सुन ले तू सुन भजन ना जी धन्यवाद। श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त इन दी अपनी गप्पा गैन सो बिल्कुल लाइव चल रही इन तुंदे वीडियो सेट माता अगली जानकारी तू हो गया है जरूर शेयर कर दें। शतो मैकलोडगंज में क्या सो अक युवक तो क्या सो अक 76 ग्राम चिट्टा किया सो बरामद हुआ और युवक किया सो अरेस्ट भी भुचिगो हा जी बिल्कुल और जो ASP ने सो बल्लू कर दें कि भाई ना बख्सने सो जो भी चिट्टा सप्लाई जो भी भंग बेच दें सो सब और इसी सो क्या तू सो भी दसना चाहता सो तो जिला कांगड़ा पुलिस से किया सो नशे रे विरुद्ध जो अभियान चलू रहा जो कि जिला कांगड़ा चलू रहा इवन कि पूरे हिमाचल प्रदेश री पुलिस डिपार्टमेंट री तरफ थों किया सो चल रहा आका अभियान विशेष अभियान रहे तहत किया सो मैकलोडगंज क्षेत्र रहा के युवक युवक थों किया सो 76 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ सो तो तुसो दसना चाहता आरोपी री पहचान किया सो देरा मंडल लक्की डोगरा रे रूप में किया सो भुचू कर दिया सो तो और पुलिस से किया सो आरोप रे विरुद्ध मामला दर्ज करी लियो आगामी कार्यवाही शुरू करी देते मिली जानकारी रे मूल रे जानकारी रे अनुसार किया सो 9 जून जो मैकलोडगंज थाना री टीम किया सो अपने जिन के राउंड पर चल देते राउंड पर थे और टिंगल बोर्ड रे मार्ग पर की अशोतों सो मैकलोडगंज री और गंदे समय पुलिस री नज़र की सो सड़क किनारे अक मतलब व्यक्ति पर की पे जो कि मतलब इस प्रकार हो कि बेकुर जो कि पुलिस आड़े तो पता पूरा ज्ञात बंदा कि क्या चीज़ बच्चो करते कड़ी क्या बच्चो करता और ये व्यक्ति अगर सूरे करे थोड़ा करे घबराएगो तो कतियो घबराएगो है ना पुलिस जो बिल्कुल शक हुआ और नियम अनुसार तीनिया तलाशी भी ले तीनिया उगर का सूचना भी बोने हाँ और तलाशी वे दौरान किया सो युवक थो किया सो 76 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ सो तो और 35 वर्ष युवक थो जो कि अब अरेस्ट बुझी कुछ रहा था रोज़ाना जानकारी हिंदी ने चिट्टे रही है रोज़ाना जानकारी हिंदी भंग चिट्टा अफीम गांजा वो हमेशा बोलो बार बार बोलो श्रोता हूँ कि इस चिट्टे नशे थों इस चिट्टे थों तो है जितना दूर बुझ सकते ने उतना दूर रहा ये तुंदे घर परिवार जो बर्बाद कर दिंदा तुसु जो किया सो बिल्कुल बर्बाद कर सकता हा और करो भी करता हा पर आलिंदे अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
2: हेलो जी नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते जी कौन बोल लंदन और कड़ी थों बोल लंदन
2: मैं डाडे ते बोले अंजू।
0: अच्छा आइंदा चुमंडा मंदिर वाला डाड।
2: हां जी हां जी
0: जी अंजू जी ठीक ठाक ने राजीव बाजी
2: बस बढ़िया जी बढ़िया
0: करे फ्रेंड कदे कदे गो आज कड़ा दिन अंजू जी तुंदा
2: सवेरे सवेरे तो धूप ठीक है ना उस ते बात ठंड के पई है जरा।
0: हां बिल्कुल तो दिन मतलब अच्छा गो तुंदा संजय
2: हां बढ़िया रिया
0: ठीक है जी अंजू जी कौन देने गीत होना पसंद कर ले
2: हेलो। हाँ जी,
0: जी अंजू जी, क्या फरमाइश देना चाहते हैं तो है रेडी गुंजन
2: फरमाइश
0: धर्मशाला
2: फरमाइश
0: अज।
2: सुननी यहाँ पे जी, मतलब बाबे का गाना सुनना।
0: चिमटे दी छणकार बाबा तेरे
2: हाँ
0: चिमटे
2: जी,
0: दे, क्या
2: हाँ
0: बात है
2: जी,
0: क्या
2: क्योंकि
0: बात है जनाब, जरूर रेडी गुंजन में
2: भगवान
0: गीत
2: दी, नहीं
0: जी
2: नहीं सर, भगवान दी मेहर होए ना
0: जी
2: सब कुछ है, क्योंकि उसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है
0: हाँ बिल्कुल डेफिनेटली
2: ना,
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली
2: क्योंकि उसके भी उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ना बुझ सकता
2: हाँ जी, हाँ जी,
0: और ये बड़ी सत्य गल है, बड़ी सत्य गल है
2: हाँ
0: कि ईश्वर री मर्जी बगैर की आसो पत्ता भी नहीं हिलता, और इंसान सोचता कि सब कुछ आऊं करूं करदा
2: जी,
0: ना। चलिए ठीक है जी, तुसु जरूर हुनर ले तुंदा ये पसंदीदा भजन,
2: हाँ जी,
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।
0: चलिए श्रोताओं, तो ऐसा बन रहे हैं इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो के कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है। हिंदी अपनी गप्पा तुम दे सभी वे वेडियो एरा रेडियो सेट में, और जितने भी श्रोता सो हुणु कर देने इस समय ता चलिए मैसेज भी आ सो भी तुसु है, आई थिंक तुसु ना पढ़ाई सक देना है, लेकिन मैसेज आ सचिन सर कुंडने गीत केलंग मराली वाला गीत होना ही है ना जी। कविता स्लेड गोदाम तो फरमाइश है, कविता जी रही स्लेड गोदाम बड़ी अच्छी जगह, बड़ी प्यारी जगह, धौलाधार पर्वत जो सामने धौलाधार पर्वत तुसु हो दिया ठेरी गोद में बस रहे, बड़ा ही प्यारा दिया ग्रां स्लेड गोदाम, बहुत ही खूबसूरत दिया है ग्रां स्लेड गोदाम, और इडिया रेमानो भी कहन सो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत नेक दिल हैं, डाउन टू अर्थ न, और सोगे सोगे हेल्पफुल भी हैं, जो कि हर किसी ये बोलना चाहिए है ना। सो जिंदगी क्या है श्रोता, जो कसी रकम नहीं है, सो इंसान ही क्या है जो कसी रकम नहीं है। तो बहरहाल कार्यक्रम जो बढ़ंदन है गु फरमाइश और दौर कर दिन फिर यह है शुरू बने रहे, तो सब आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज आप।

शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा है कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर देने अपने अपने वेडियो सेट में बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर सभी होने वाले रहा हार्दिक अभिनंदन। हाँ चलिए शतो कार्यक्रम मंच थोड़ा करे और हगू बढ़ देन फरमाइश रहा दौर के सो पूरा कर लेन धर्मशाला रहा मौसम इस समय फिर के सो बदले गो शतो बेचा धूप जरूर लगे थे कोई साढ़े के तराई बजे करीब लेकिन इस समय फिर के ऐसो मौसम बदलेगा बरखा के ऐसो लगे पे या शो तो हो जाएंगे मैं दसो बे गया दो चूट दिन के ऐसो बरखा रहने है ना तो चल दिन और कार्यक्रम में आगो बढ़ दिन भरमाणी माता रा भजन होना थो सो होन दिन शो तो है ना जी और एरे दणे देवते रा आशीर्वाद के सो हमेशा चाहिए दस हो यारे आशीर्वाद रे बिना कुछ भी नहीं और हमेशा यही है कि बगैर ना ईश्वर रे इंसान कुछ भी नहीं पल भर में कुछ भी बुझी सकता पल भर में सिर्फ पल भर रे दे रहा ता घमंड ना करना कभी भी किसी भी गल रहा किसी भी चीज़ रहा क्या सो घमंड नहीं ना चिंता इंसान जो हमेशा क्या सो डाउन टू अर्थ जमीन सो की जुड़ी करके सो रहना चाहिए सो तो और भगवान रहा ना किया सो लेना चाहिए।

श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के तो सब हूँ कर देने हिंदी अपनी गप्पा। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगू बढ़न देन और कार्यक्रम मंच वे लेके चलते तू सभी जो इस प्यारे दे भजनरी किनारे बने रहा आर जे सचिन कपूर सोगी।

शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ये सभी है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा कहने सो बिल्कुल लाइव चल रही हैं तंदे सभी रे रेडियो सेट में रेडी गुंजन धर्मशाला मंच और फिलहाल श्रोतों समय तो बुझेगो तुसु सभी तो इजाजत लेने रहा समय बुझेगो तुसु सभी जो टाटा बाय बाय बलने रहा और क्या करिए जल दिल दिल दिल हा कि मंदा नहीं हा दिल हा कि ना मंदा लेकिन समय रा के आसो अभाव आशो तो गाना तो पहना है ना और समय भी इज्जत करना के आसो बड़ी अच्छी गल हा और इंसान सो ही सक्सेसफुल हो सकता है शोधों जो समय की इज्जत करना जाना समय रा भाव जो जाना है ना समय समय पर परिवर्तन करना जाना और समय समय पर क्या सो अपने आप में चेंज ले करिए या समय पर सब भी इज्जत भुआ मान सम्मान भुआ ये बहुत ज़रूरी है समय पर समय भी समय सो के प्यार ज़रूर करे शोधों है ना ताऊ सचिन कपूर तुसु थाऊ ले लेनो इजाज़त दत्ते फिर मूल दिन कुछ एक खास जानकारी होगी कुछ एक इंद श्रोतागण सोगे और अपने इस गादे कार्यक्रम जो इंदी अपनी गप्पा जो जो कि वेड़ी गुंजन में चूर थो पांच इंदा और आजकल फेसबुक रे माध्यम थो भी है तुसु तक पुजू कर देन कनेक्ट बुजू कर देन घरे घरे और बहुत जल्द कुछ एक इंद अपने ऐसे नामी चेहरे तुंदे अगो जरूर लेकर इला शोता हूँ है ना और फिलहाल मुझे यानी सचिन कपूर जो दिया तो है इजाजत गंदे गंदे बोलना चाहनो सियाने भी इज्जत कर दे रहा मान सम्मान करा मोबड़े री सेवा करा बुसगा था अपनी तरफ थो कि आसो हेल्प जरूर करा मनो रे है ना तुसो लगता कि तुसो इस काबिल बनूरा भगवान ने जरूर हेल्प करा शोता हूँ कर्म जो किया सो हमेशा अच्छे करा अच्छे बना कर्मा जो इन शब्द था सचिन कपूर ले लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
5: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
6: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
7: Oh no.
5: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ।
6: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

नमस्कार जी, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी जॉकी सचिन कपूर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जो कि होना भी चाहिए। खुश और तंदुरुस्त रहना जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्रोताओं। इसी के साथ ज़िंदगी जो है वो अच्छी चलती है, बेहतरीन चलती है और मज़ेदार चलती है, है ना जी। तो कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, साथ ही साथ आपको गीत संगीत के साथ भी रूबरू करवाएंगे। लेकिन क्या आप सभी को पता है हम धर्मशाला में रहते हैं, और धर्मशाला में रहने का फ़ायदा नहीं, मैं गिनवा नहीं पाऊंगा, मेरे पास शब्द कम हो जाएंगे धर्मशाला में रहने के फायदे के। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस समय ये जून महीना है, ये तपती गर्मी है, जहाँ अगर हम निचले इलाकों की बात करें तो ऊना में भी टेम्परेचर जो है वो 40 से अब जाता है, लगभग 40 के आसपास रहता है। लेकिन इस समय अगर मैं बात करूँ धर्मशाला की, जी बिल्कुल, लाइव के माध्यम से जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, इस समय धर्मशाला में काफ़ी ज़्यादा बारिश और तूफान जो है वो आया था श्रोताओं, और एकदम से जो है वो तापमान दिन में भी यहाँ पे भी 32 या 35 के आसपास जो है वो रहा था टेम्परेचर। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूँ धर्मशाला की, तो 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है। जी बिल्कुल, 16 डिग्री के आसपास जो है वो इस समय तापमान है धर्मशाला में। यह है धर्मशाला की खूबसूरती। और अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए, नमी की बात की जाए, तो 67% के आसपास जो है वो ह्यूमिडिटी है, नमी है। ये वाकई में ही बाकमाल है ना, ये धर्मशाला है। यहाँ की हवाएं, यहाँ की फिजाएं, धर्मशाला की हवाएं, धर्मशाला की फिजाएं, यहाँ का नहीं है कोई थौर। और हमारा धर्मशाला का मौसम है इतना खूबसूरत, हमारे अपने धर्मशाला का मौसम है इतना खूबसूरत, जितना खूबसूरत नहीं है कहीं और का मौसम। जी बिल्कुल, कहीं और का मौसम हो ही नहीं सकता, इतना खूबसूरत, इतना सुहाना, इतना बढ़िया। तो प्रकृति की देन है, और इसे संभाल कर रखना, इसे संजो कर रखना जो है वो हम सभी का कर्तव्य बन जाता है, हम सभी का दायित्व जो है वो बन जाता है श्रोतों। और प्रकृति के साथ अगर हम प्यार करते हैं, एनवायरनमेंट को अगर हम प्यार करते हैं, उसे अच्छे से रखते हैं, उसे दूषित नहीं करते हैं, तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है श्रोताओं, बहुत कुछ। और प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं, और ये कार्यक्रम 8 बजे तक बिल्कुल लाइव चलेगा श्रोताओं। इस कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी

बखूबी जानते होंगे कि इस कार्यक्रम में जो है अवगी संगीत का पिटारा भी खुलेगा, जानकारियों का पिटारा भी है खुलने को बाकी। जी बिल्कुल, जानकारियों का पिटारा जो है वो भी खुलेगा श्रोताओं। तो आइए जी, ये थी मौसम की जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई है, और अन्य बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं कुछ ही देर में। लेकिन आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी की ज़िंदगी में तो ज़रूर आया होगा, आप सबकी ज़िंदगी में भी जो है वो ज़रूर आया होगा कोई ना कोई कभी ना कभी। तो आइए जी, आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का आप सभी के वीडियो सेट पर। रेडी गुंजन धर्मशाला में गीत के बोल हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके। क्या बात है, एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को रेडियो के सेट पर। रेडियो गुंजन

शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो आइए श्रोतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आगे आपको लेके चलते हैं आज के विचार की ओर। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है श्रोतों। अगर अच्छी सोच रखोगे बेहतरीन सोच रखोगे तो निरंतर प्रयास भी करते रहोगे, है ना। आप अपने लक्ष्य की ओर जो है वो लगातार प्रयास करते रहोगे और यही सफलता की कुंजी है। छोटी छोटी उपलब्धियों और निर्णयों से जो है वो जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। धैर्य रखें और अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखें श्रोतों। हर सुबह एक नई शुरुआत है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ें श्रोतों। विश्वास करें कि आप कर सकते हैं और आपने आधी दूरी तय कर ली है श्रोतों। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों को लेकर जो है वो सुबह उठें और जो भी आपने लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की ओर जो है वो अग्रसर हों, आगे बढ़ें। आप सभी बने हुए हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरसी वेड़ी जो कि सचिन कपूर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते कुछ एक जानकारियों के साथ अपने श्रोताओं को जो है वो रूबरू करवाते हैं। श्रोताओ, भारत अफगानिस्तान वनडे मैच में पैराग्लाइडिंग और हवाई गतिविधियों पर जो है वो रोक है। जी बिल्कुल, आप सभी को मैं सूचित करना चाहता एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में 13 जून 2026 को आयोजित होने वाले भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दृष्टिगत सुरक्षा व जनहित को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग एवं अन्य हवाई गतिविधियों पर रोक के आदेश जो है वो जारी किए हैं। श्रोतों, इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ जिला दंडाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला शिल्पी बैक्टा ने यह बताया है और ये आदेश जारी करते हुए बताया है कि खिलाड़ियों, अधिकारियों तथा दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीए स्टेडियम तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में 11 से 13 यानी कि आज से 13 जून 2026 को मैच समाप्ति तक जो है वो पैराग्लाइडिंग और अन्य सभी हवाई गतिविधियों पर जो है वो पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। श्रोताओं जी बिल्कुल, तो आज से 13 जून तक जो है वो पैराग्लाइडिंग और अन्य सभी हवाई जो चीज़ें हैं वो

और मैं अक्सर कहता हूँ खिलाड़ी वही बड़ा है जो खेल बेहतरीन खेले। तो आज मुझे लगता है अभ्यास नहीं हो पाया होगा भारत और अफगानिस्तान दोनों टीमों का, क्योंकि आज जो हमारे नाग देवता जी हैं, इंदुनाग महाराज जी हैं, उनका दिल नहीं था कि ये दोनों टीमें जो है वो अभ्यास करें। फिर उन्होंने अपना तांडव दिखाया और ये दृश्य, ये एटमोसफियर जो है वो बनाया कि बहुत खूबसूरत सा ये मौसम जो है वो बना दिया, बारिश हो गई और सभी लोगों को जो है, इवन कि जो बाहर से पर्यटक आए हैं उनके लिए ये बड़ा मतलब पैसा वसूल मौसम था। हाँ बिल्कुल, पैसा वसूल ये मौसम था, इतना प्यारा मौसम हो चुका था, पूरी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही थी, है ना, तो पैसा वसूल मौसम था धर्मशाला में करीबन 1 बजे के बाद। तो जाहिर सी बात है अभ्यास तो हुआ नहीं होगा, है ना। तो आप सभी बने हुए इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। इसी के साथ अन्य जानकारियां और भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, श्रोताओं, अन्य जानकारियां और भी हम ज़रूर आप तक शेयर करेंगे। श्रोताओं, वो गीत याद है आप सभी को, कौन सा वाला, कौन सा वाला सुन पा रहे हैं शायद आप सभी? मैं बताता हूँ कौन सा वाला। दिल कहता है चलो उनसे मिल, लेकिन उठते ही कदम जो है वो रुक जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा शतों। ये इश्क चीज़ ही ऐसी है, ये मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, ये प्यार ही ऐसा है कि हर इंसान का कदम जो है, हर इंसान के कदम जो है वो रुक ज़रूर जाते हैं, वो थम ज़रूर जाते हैं, वो ठहर ज़रूर जाते हैं। ये मोहब्बत ही ऐसी है, ये इश्क चीज़ ही ऐसी है श्रोताओं। बहरहाल कार्यक्रम को इंजॉय कर रहे हैं हम सभी गुड इवनिंग धर्मशाला और लाइव आप सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो सेट पर 91.2 MHz पर, आपका अपना रेडियो गुंजन, आप सभी का अपना रेडियो गुंजन। आइए एंजॉय करते हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला में इस खूब

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और श्रोता अब वक्त हो गया है 6:30 और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

शतवंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। होप सो आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे गुड इवनिंग धर्मशाला को। शतो, एक बात है जिस पे हिमाचल सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, और हिमाचल सरकार के साथ साथ मुझे ये लगता है कि जो समाज सेवी हैं वो भी बहुत ज़ोर दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये वाकई में थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है। शतो, आप सभी बने हुए इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में, और कि चिंता वाली बात, जो चिंतित होने वाली बात है वो है सूखा नशा। शतों, और आप भी देखिए, हम हर रोज़ आपको अपडेट करते हैं, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ही जानकारियां होती हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। शतों, हम कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की धर्मशाला की जानकारियां जो हैं वो हमारे लोगों तक पहुंचे, हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, है ना जी। तो मैक्लोडगंज में एक युवक पकड़ा गया है श्रोताओं, जिसके पास 1.76 ग्राम चिट्टा जो है वो बरामद हुआ है। अब आप बताइए, ये मैक्लोडगंज जो पर्यटक नगरी है, और पर्यटक नगरी से जो है मैक्लोडगंज को जाने जाता है श्रोतों, वहाँ पर जो है वो 1.76 ग्राम चिट्टा जो है वो पकड़ा गया है। जी बिल्कुल श्रोताओं, जिला कांगड़ा पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान, विशेष अभियान मैं कहूँगा, विशेष अभियान के तहत मैक्लोडगंज क्षेत्र में एक युवक को 1.76 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। श्रोताओं, आरोपी की पहचान जो है वो देहरा उपमंडल के बनखंडी निवासी 35 वर्ष इनकी उम्र है, लक्की डोगरा इनका इसका नाम है। श्रोताओं, पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार 9 जून को मैक्लोडगंज थाना की टीम ने जो है वो श्रोताओं इसको पकड़ा था श्रोताओं, और टिंगल बोर्ड मार्ग पर जो है वो इसको पकड़ा था श्रोताओं, आना चाहिए। और वाकई में ही ये सूखा नशा, हम बार बार कहते हैं श्रोताओं, इस चीज़ के लिए हर बार कहते हैं कि सूखे नशे से जितना हो सके उतना दूर रहें, और फिर भी हर रोज़ ये जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं श्रोताओं, और ख़ासकर जो हमारे हिमाचल की जानकारी है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की धर्मशाला की जानकारी है। श्रोताओं, बार बार जमानत के बाद भी सक्रिय तस्कर पर कसा सिकंजा, नशे के अवैध कारोबार पर प्रहार, धर्मशाला जेल भेजा तस्कर। श्रोताओं, युवाओं को नशे से बचने के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई है। SP कांगड़ा अशोक रतन ने बोला, नशे के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति जारी रहेगी। कार्यक्रम आप सभी RJ सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, और आइए इस सूखे नशे को जो है वो हम कैसे रोक सकते हैं। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ में इस समय जो है वो हिमाचल प्रदेश के में सूखा नशा जो है वो फैल चुका है, तो इस पर विशेष कर हमें ध्यान देना होगा। और ख़ासकर हमें ये नहीं सोचना है श्रोताओं कि ये फलाने का लड़का है, इससे हमने क्या लेना है, ये फलाने का लड़का है इससे हमने क्या लेना है, ये जो भी कर रहा है, नहीं, वो फलाने का लड़का ही एक दिन आपके लड़के के साथ बैठ कर इस नशे का उपयोग जो है वो करेगा, इस चिट्टे का उपयोग जो है वो करेगा, और ये बर्बाद कर देगा हमारी नस्लों को, ये बर्बाद कर देगा हिंदुस्तान को, हिमाचल प्रदेश को। तो हमें बचाना है, इसके लिए हमें जो है वो वादा करना होगा, प्रॉमिस करना होगा कि इस सूखे नशे के जितने भी हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग हैं जो इस तरह का सूखा नशा करते हैं, उनको जल्द से जल्द पुलिस के हवाले जो है वो करना है। ये प्रॉमिस, ये वादा हमें निभाना है श्रोताओं। बहरहाल आप सभी बने हुए समय FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, और बहुत सारे गीतों का आनंद जो है वो अभी हमने लेना बाकी है। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत के, और हमारी अधूरी कहानी गीत के बोल हैं श्रोताओं।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर, हमारी अधूरी कहानी। अब वाकई में जब जब ये गाना हम सुनते हैं तब तब श्रोतो थोड़ी आंखें जो है वो नम सी हो जाती हैं, भर सी आती हैं, और बहुत कुछ याद सा जो है वो आ जाता है। मुझे नहीं, आप सभी को भी आता होगा श्रोतो। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी आपके साथ साझा करते हैं श्रोतो। अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले विश्व के सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक धौलाधार की तलहटी में स्थित धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर अब ब्यास नदी के किनारे देहरा में भी क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के ब्यास कैंपस देहरा में क्रिकेट मैदान बनाए जाने के लिए 15 करोड़ के बजट प्रावधान संग संभावनाएं व जमीन तलाशी जा रही है। श्रोताओं, सीयू कैंपस देहरा में बन रहा है भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें इंडोर स्टेडियम यानी मल्टीपर्पज़ हॉल भी जो है वो शामिल है। उसे ही और अधिक विस्तार देते हुए क्रिकेट स्टेडियम बनाने की भी रूपरेखा जो है वो बनाई जा रही है श्रोताओं, जिससे देश भर के विश्वविद्यालयों संग हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने को बेहतरीन सुविधा मिल पाएगी। श्रोताओं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में आखिरी 16 वर्ष के बाद

अपना स्थायी कैंपस इसी वर्ष मिलने की उम्मीद जग गई है। 251 करोड़ से भी अधिक धनराशि से देहरा में व्यास कैंपस का 85 से 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। श्रोताओं, इसके साथ ही अब व्यास कैंपस में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है वो भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है। इस कड़ी में विभिन्न जो है श्रोताओं आउटडोर गेम्स के लिए जो है वो सिंथेटिक ट्रैक व इंडोर गेम्स के लिए जो है वो इंडोर स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। श्रोताओं, इसके लिए केंद्रीय विवि सचिवालय की ओर से क्रिकेट जगत से जुड़ी हस्तियों व BBCI पदाधिकारियों से भी विचार विमर्श जो है वो चल रहा है। तो बहुत जल्दी जो है वो देहरा को भी मिल सकता है धर्मशाला जैसा क्रिकेट स्टेडियम। कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और श्रोताओं, कहते हैं ना कि कहना ही क्या क्या कहना, आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कहना। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव अपने अपने रेडियो सेट पर। कहना ही क्या, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा ये गीत आप सभी ने सुना आपके अपने रेडी गुंजन धर्मशाला में। श्रोताओं तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में श्रोताओं और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमने आप तक पहुंचानी है। कार्यक्रम का नाम गुड इवनिंग धर्मशाला है और इस कार्यक्रम में आप सभी बाखूबी बने हुए हैं श्रोताओं। तो आइए थोड़ा सा खेल समाचारों की ओर लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को। हार्दिक अफगानिस्तान सीरीज से बाहर। श्रोताओं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। श्रोताओं बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो है वो फिटनेस टेस्ट पास करने के कुछ ही घंटों बाद हार्दिक को जो है वो मांसपेशियों में खिंचाव हुआ श्रोताओं और उन्हें पेन होने लगी। 32 साल के हार्दिक आईपीएल के दौरान मुंबई इंडियंस की तरफ से जो है वो खेलते हुए पीठ की जकड़न का शिकार हो गए थे श्रोताओं। वह इसी चोट से उभर कर फिटनेस क्लब में पहुँचे थे और जो कि बेंगलुरु में है श्रोताओं। रिपोर्ट के अनुसार अब नई चोट की वजह से उन्हें रिकवरी के लिए जो है वो काम करना पड़ेगा। 3 हफ्ते का समय लगेगा जिसके चलते वह आगामी सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जानकारी के अनुसार हार्दिक पांड्या बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट के आखिरी दौर में थे और उसी दौरान उन्होंने अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए जो है वो मैदान पर पूरे 10 ओवर गेंदबाजी की श्रोताओं। और माना जा रहा है कि लंबे ब्रेक के बाद अचानक बॉलिंग का पूरा कोटा डालने के कारण ही उनकी जो है वो जांघ की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा और वह नई चोट का शिकार हो गए श्रोताओं। बता दें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए चोटिल हुए थे। दोनों को मंगलवार को वनडे सीरीज के लिए जो है वो फिटनेस के आधार पर टीम में शामिल किया जाना था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार 13 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा। सीरीज के बाकी 2 मैच 17 जून को लखनऊ और 20 जून को चेन्नई में होगा श्रोताओं। आगाज जो है मेज़बानी जो है वो धर्मशाला करेगा धर्मशाला के लोग करेंगे। बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की।

0: 14.91 MHz पर ये वेडी गुंजन धर्मशाला, और अब आप सुनेंगे श्रोताओं समाचार वेडी गुंजन के साथ।
1: दूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: Peace and stability in the region.
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is a-

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा

0: सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा गया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोता एफ एम बैंड 91.5 तो मेगा हर्ट्स पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी, जो कि बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का, सभी सुनने वालों का, सभी श्रोताओं का। तो कार्यक्रम को हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे श्रोताओं, और कार्यक्रम में देखिए पल पल दिल के पास ये गीत हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी तक जो है वो कुछ अन्य जानकारियां जो है वो भी पहुंचाएंगे। तो श्रोतों, जैसे कि मैंने बताया था कि पिछले मतलब एक दो दिनों में जो है वो अब मौसम ऐसा करवट जो है वो बदल सकता है, ऐसी करवट जो आज आपने देखी, ऐसी करवट जो है वो मौसम बदल सकता है। तो तपती धूप में थोड़ी सी आप सभी को जो है वो कहीं ना कहीं आसानी तो ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि इस तरह का अगर मौसम बनेगा तो थोड़ा सा जो है वो सिस्टम ठीक तो ज़रूर हो जाएगा श्रोतों, है ना जी। लेकिन आइए फ़िलहाल अभी तो मौसम की जानकारी नहीं, अभी अगली जानकारी के साथ जो है वो आपको रूबरू करवाएंगे। श्रोतों, रेलवे विभाग की ये बात है, रेलवे विभाग का दो ट्रेनों को बंद करने का आदेश जो है वो जनता जनार्दन के गले से जो है वो उतर नहीं रहा है श्रोतों जी, बिल्कुल। साथ ही 12 जून से हर शुक्रवार तमाम ट्रेन बंद रखने का भी ऐलान रेलवे विभाग ने जो है वो किया है श्रोतों। सालों से बंद पड़ी ट्रेन को एक हफ्ता पहले दोबारा चालू करने के लिए बड़ा तामझाम किया गया है श्रोतों। दो दो सांसद यहाँ उद्घाटन करने पहुँचे थे श्रोतों। अभी उद्घाटन को एक हफ्ता भी नहीं बीता कि रेलवे विभाग ने दो ट्रेन बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही 12 जून से हर शुक्रवार सभी ट्रेन जो है वो बंद करने की बात कही है, यानी कि कल से श्रोतों। कांगड़ा घाटी रेलवे खंड पर नियमित एवं प्रभावी रख रखाव सुनिश्चित करने के लिए 12 जून से हर शुक्रवार को साप्ताहिक रख रखाव दिवस घोषित किया गया है। इस फैसले से क्षेत्र के यात्रियों को कहीं ना कहीं जो रोज़मर्रा की उनकी उनका जीवन की रोज़मर्रा की जो यात्रा होती है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो टकराव ज़रूर आएगा श्रोतों, और पर्यटकों पर भी जो है वो व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं। जम्मू मंडल के जनसंपर्क निरीक्षक राघविंदर सिंह द्वारा जारी जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है श्रोतों की ट्रेन नंबर 52462 बैजनाथ से नूरपुर व 52471 नूरपुर से बैजनाथ का संचालन अगले आदेशों तक स्थगित किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जो है शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पुल प्रणाली तथा अन्य तकनीकी ढांचों का निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव कार्य किया जाएगा। चलिए जी, हाँ वाकई में ना कि हफ्ता भी नहीं हुआ था अभी उद्घाटन करते और उसके बाद ये दिक्कतें जो है वो सामने आ गई हैं। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप सभी बने हुए समय वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके अपने आरजे वेडीजो की सचिन कपूर के साथ। लेके चलते हैं आप सभी को श्रोतों इस प्यारे से गीत की ओर, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूँ ही।

श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने रेडियो स्टेशन पर ऐप के माध्यम से आप सभी इस कार्यक्रम को रेडी गुंजन को ऑल ओवर वर्ल्ड भी सुन सकते हैं। गुंजन इंडिया रेडियो अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर लिखते हैं तो ज़रूर आप अपने सभी कार्यक्रमों का, जितने भी कार्यक्रम रेडी गुंजन में ब्रॉडकास्ट होते हैं, उन सभी का आनंद आप ज़रूर ले सकते हैं श्रोताओं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, रूबरू करवाना चाहता हूँ। प्रदेश में 236 तस्करों के ठिकानों पर पुलिस ने एक बार फिर से छापामारी करी है। जी बिल्कुल, चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान का दूसरा चरण जो है वो आरंभ हो चुका है। दूसरा चरण जो है श्रोताओं वो शुरू हो चुका है। प्रदेश पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को पूरे प्रदेश में एक साथ व्यापक तलाशी व छापेमारी अभियान जो है वो चलाया। श्रोताओं, विशेष अभियान में जिला पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीमों ने जो है वो सक्रिय मादक पदार्थों तस्करों के ठिकानों पर जो है वो दबिश दी। श्रोताओं, अभियान का दूसरा चरण खुफिया सूचनाओं, तकनीकी विश्लेषण और विभिन्न ज़िलों के बीच में जो है वो संवाद्य के आधार पर जो है वो सुनियोजित तरीके से संचालित किया गया। उद्देश्य जो है श्रोताओं वो नशा तस्करी में शामिल नेटवर्क को चिन्हित कर देना है और उन्हें ध्वस्त करना है। नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने तथा अवैध कारोबार में जो लोग शामिल हुए हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो करना है और हो भी रही है। श्रोताओं, अभियान के दौरान प्रदेश भर में 236 सक्रिय मादक पदार्थ तस्करों के घर, ठिकानों और अन्य परिसरों

50 मिलीमीटर अवैध शराब भी पकड़ी और 2,31,690 रुपए नगद बरामद भी हुए। श्रोतों, अवैध शराब बरामद होने पर हिमाचल प्रदेश अबकारी अधिनियम के तहत 2 मामले भी जो हैं वो दर्ज किए गए। श्रोतों, इसी प्रकार से जानकारियां जो है वो चलती रहेंगी। वेड़ी गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आई तो एंजॉय हूँ शाम और शहर, ये कॉलेज समय में मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत था। श्रोताओं, रह जाती हैं, कहते हैं ना कि वो वक्त वापस नहीं आता, वो समय वापस नहीं आता, वो दौर वापस नहीं आता। इस सके उस समय को जियो और जितना हो सके एंजॉय कीजिए जिंदगी को।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने रेडी गुंजन धर्मशाला ट्यून किया हुआ है। जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, श्रोतों गीत संगीत का पिटारा भी यूं ही चलता रहेगा। आइए तो आप सभी मौसम का आनंद ज़रूर ले रहे होंगे, क्योंकि धर्मशाला की ये बरसात, धर्मशाला की ये हवाएँ, ये ठंडी फिजाएँ जो है वो बहुत कुछ बयां करती है। और श्रोतों हम बहुत खुशनसीब हैं जो धर्मशाला में रह रहे हैं, और हमें एकमात्र काम करना है श्रोतों, धर्मशाला की खूबसूरती को जो है वो बरकरार रखना है, धर्मशाला की इस नेचुरल हवा को जो है वो बरकरार रखना है। वो ऐसे रख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं श्रोतों, प्लास्टिक का कम से कम जो है वो उपयोग करें, ना के बराबर जो है वो प्लास्टिक का उपयोग करें श्रोतों। इन्हीं खास बातों का जो है वो हम ध्यान रखते हैं, और अगर इन्हीं खास बातों का हम ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो ज़रूर हम सभी धर्मशाला की ये हवाएं, ये फिजाएं, ये ठंडी हवाएं बरकरार रखेंगे। बरहाल लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की, और वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
7: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
9: Oh no!
7: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
8: हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।
10: नहीं बना।

0: छोटो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: अधिकारी से संपर्क उठाने
2: सामाजिक न्याय

0: सपना को साकार करने में महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाए हिमाचल के हित के मुद्दे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नीरज भारती के आरोपों से उजागर हुआ सरकार का भ्रष्टाचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आरडीजी सहित हिमाचल के हितों के मुद्दे उठाए। उन्होंने प्रदेश के सामने मौजूद वित्तीय चुनौतियों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आरडीजी बंद होने के बाद प्रदेश को दिए गए 25,000 करोड़ रुपए की राशि को नाकाफी करार दिया और विकास गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस राशि को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 और 13 जून को शिमला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। ईरान के हॉर्मुज जल डमरू में एक भारतीय तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में हमीरपुर जिला के गलोड़ के रहने वाले नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदित्य शर्मा की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर मुमकिन सहायता देने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। सोलन जिला में जनगणना के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर है। जनगणना निदेशक दीप शिखा की अध्यक्षता में आज सोलन में कर्मचारियों को जनगणना का प्रशिक्षण दिया गया और इस कार्य की बारीकियों से अवगत करवाया गया। दीप शिखा ने इस मौके पर कहा कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इन दिनों स्वगणना का कार्य चल रहा है।
1: फर्स्ट फेज जो है वो 16 जून से 15 जुलाई के बीच में चल रहा है और हमारा इसमें स्वगणना का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत की कोई भी जो हमारा जनमानस है, आम जनता है, वो स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in पे जाके उस पे FAQs दिए हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपनी मोबाइल नंबर के थ्रू उसमें एंटर करके अपनी लोकेशन मार करके 33 जो प्रश्न है आधिकारिक रूप से उनके आंसर भर सकते हैं पोर्टल पे। तदुपरांत उनको एक सेल्फ इन्यूमरेशन ID जनरेट होगा, जिसको की प्रगणक जब हमारे 16 जून से 15 जुलाई के बीच में आएंगे तो उनके साथ शेयर करेंगे और फाइनली वो उसको एक बार वेरीफाई करके पोर्टल पे सबमिट करें। पूरे हिमाचल में हमारे करीबन 18,600 के करीब करीब जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगी है।
0: स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधारीकरण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री आज शिमला में अटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल चमियाना में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में रोगी कल्याण समिति के 2026-27 की अनुमानित आय और व्यय के अनुमानों को मंजूरी दी गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों को घर द्वार पर उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके। जगत सिंह नेगी ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जिम्मेवार ठहराया है। हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को RDG के रूप में 5 सालों में

0: सबसे पहले तो जयराम जी और उनकी जो सरकार 5 साल रही है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि रेवेन्यू जनरेट हो, जो ये पिछली लाइबिलिटीज है, जो कर्मचारी के एरियर्स है, पेंशन की, मेडिकल रिइम्बर्समेंट है और चीजें, वो हम देने की कोशिश सरकार कर रही है और बहुत हद तक जो है इसको दिया भी गया है। बीजेपी तो राजनीति करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है।
1: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस नेता नीरज भारती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों से सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने आज शिमला में कहा कि नीरज भारती के आरोपों ने साबित कर दिया है कि सरकार ने लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनादेश सरकार के खिलाफ है और आने वाले समय में जनता कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा पहले सैलरी डेफर करने और इस फैसले को वापस लिए जाने पर कहा कि सरकार ने यह फैसला बिना सोचे समझे लिया था। इस बीच जिला परिषद के चमियाना वार्ड से रिकॉर्ड मतों से जीते खुश विक्रम सेन ने आज शिमला में जयराम ठाकुर से अपने कार्यकर्ताओं सहित भेंट की। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वे कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्हें इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौतम ने देश का प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क शुरू किया है। वे बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिला की तीसा उपमंडी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि इस उपमंडी के शुरू हो जाने से क्षेत्र के किसानों और बागवानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अब घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष दिलदार अली भट्ट ने इस मौके पर जिले के सभी किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने और सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन मूल्य का लाभ उठाने की अपील की। पंचायत समिति जुब्बल के आज संपन्न चुनाव में कांग्रेस समर्थित कमलेश झगता को अध्यक्ष और लोकपाल शरखोली को उपाध्यक्ष चुना गया। ये चुनाव निर्विरोध हुए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने गुणात्मक स्कूल शिक्षा के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। धर्माणी आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंगार में विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने मंत्री से भी प्रश्न पूछे। धर्माणी ने बाद में एम्स बिलासपुर का दौरा भी किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार एम्स की आपात सेतु पहल को प्रदेश भर में लागू करने का प्रयास कर रही है ताकि आपात स्थिति में मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से हिमाचल को सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के हिस्से के तौर पर ही पैसा मिल रहा है और राज्य को किसी प्रकार की विशेष आर्थिक सहायता नहीं मिली है। विनय कुमार ने आज शिमला में कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपने सभी दायित्वों को पूरा कर रही है और सभी कर्मचारियों की देनदारियों को चरणबद्ध ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वो प्रदेश हित में केंद्र से हिमाचल को विशेष आर्थिक मदद दिलवाएं और आरडीजी को भी बहाल करवाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाए हिमाचल के हित के मुद्दे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नीरज भारती के आरोपों से उजागर हुआ सरकार का भ्रष्टाचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। जाते जाते यही कहूँगा कि बड़ों की इज्जत करते रहिए, मान सम्मान करते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, पर्यावरण को जो है वो सुरक्षित रखिए, अपनों के साथ प्यार रखिए, अपना प्यार जो है

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
5: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
6: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
5: Oh no. तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
6: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।